0: का उधार
1: श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं।
0: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM।

खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज न होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो यह है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Solo Sharda.
6: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
8: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
9: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
7: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं नाचीज हरदिल अजीज गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने से खास प्रोग्राम के माध्यम से, जिसका नाम है बिंदास सुबह बिंदास बोल बिंदास बातें। और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। बड़ा ही खूबसूरत गाना है स्वर्ग फिल्म का, गोविंदा साहब के ऊपर वो फिल्म आया गया है, बम बम बम बम बम्बई बम्बई हमको जम गई। फिल्म का नाम आता है, गाने का नाम आता है, तो जहन में कहीं ना कहीं एक पिक्चर बन जाती है। पिक्चर बनती है मुंबई, वो गढ़ है जहां लोगों की किस्मत बदलती है, जहां एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, यानी कि सबका एक संगम है। जब इस तरीके से मैंने एक छोटी सी रूपरेखा बना दी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक ऐसी ही शख्सियत मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका नाम है संदीप जी। बहुत बड़ा अनुभव है, आप पेशे से एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और थिएटर एडुकेटर हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने पढ़ाया है जो आगे चलकर अपना नाम कर रहे हैं, इनका नाम कर रहे हैं। तो फाइनली सर सुरेश यादव 90.8 एफएम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच गगन जी, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन। सुनो शारदा 98.8 एफएम के सभी लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं एक छोटी सी नाचीज हूँ, सेवा में आपके उपलब्ध।
0: क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई चीज मुझसे छूट ना गई हो, तो यही मैं कहूंगा कि आप प्लीज अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरीके से आपकी ये जर्नी शुरू हुई।
1: वैसे आपने सब कुछ बता ही दिया है, जर्नी को बताएं तो बहुत बड़ी जर्नी भी है और कह सकते हैं बहुत छोटी जर्नी भी है। जर्नी अभी चल रही है, अभी चलना सीख रहा हूं। वैसे देखा जाए तो 98 में ये जर्नी शुरू हुई थी। मैं अपने पापा के पास देहरादून में था और वहां पर एक एक्टिंग वर्कशॉप चल रही थी। मेरा फ्रेंड मुझे जबरदस्ती खींच के ले गया क्योंकि मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था और छुट्टियों पर आया था। बस वो वर्कशॉप करी और वहां पर एक दिल को एहसास हुआ कि शायद ये वो चीज है जो मैं अपनी जिंदगी में ताउम्र करना चाहता हूं। बस वहां से मैंने सफर शुरू किया, पहले एक्टिंग को समझा, बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स को ज्वाइन किया, बहुत सारे प्लेस किए, फिर मौका मिला कि मैं एनएसटी की टीआई कंपनी में जॉब कर सकूं। वहां से मैंने और फाइनेंस टच की सीखे, मैंने इसके नुआंसेस सीखे इसके मैंने, और वहां से मुझे इसकी कला का एक माहीन चीज मुझे समझ में आई। और मुझे वहां पर यह भी सिखाया गया कि टीचिंग क्या आर्ट है। बस फिर वहां से मैं मुंबई गया और मुंबई में मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स और वहां पर भी मैंने थिएटर किया। मुझे मौका मिला एफटीआई 2004 में, वहां पर फिर से एक्टिंग का कोर्स खुला था
0: पुणे
1: में
0: जी।
1: तो रवि बासवानी जी उस वक्त वहां के डायरेक्टर थे, तो मुझे मौका मिला कि वहां पर हर साल सिलेक्शन प्रोसेस के 4 दिन का वर्कशॉप हम डिजाइन करें और उसको कंडक्ट करें। तो 2004 से लेके 10 तक हम वहां पर हर साल जाते थे, तो बहुत अनुभव हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही साथ मैंने प्रोडक्शन हाउसेस में बिहाइंड द कैमरा काम किया क्योंकि मैं समझना चाहता था कि बिहाइंड द कैमरा क्या होता है
0: जी।
1: तो लाइव शोज, बिहाइंड द कैमरा, थिएटर, टीचिंग, सब चीजें एक साथ चल रही थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था मुझे क्योंकि मैं सीखना चाहता था। फिर मुझे मौका मिला, मैं तारक मेहता उल्टा चश्मा का क्रिएटिव हेड रहा। जी
0: क्या बात है।
1: शुरुआती में 2008-2009 में मैं उसका क्रिएटिव हेड था
0: जी।
1: मैंने उसमें भी बहुत कुछ, एक उसमें जो एक सिंप्लिसिटी थी
0: जी,
1: और उसके जो प्रोड्यूसर है असित मोदी जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैं ये टीवी में कहीं स्टक कर रहा हूँ, मुझे अपनी ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी बिकॉज वहां पर बहुत चीजें जो हैं एक ढर्रे पे चल रही थी। ये किया, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मुझे आगे और अभी सीखना था। तो फिर मैंने वहां से सर को बोला कि मैं निकलना चाहता हूं, तो सर ने मुझे इजाजत दी। फिर मैं वापस थिएटर में आया क्योंकि मैं
0: थिएटर मुंबई थिएटर में आया या
1: नहीं, मेरे को एक्चुअली क्या हुआ कि एफटीआई पुणे में मिस्टर पेंटल जी मिले थे, वो वहां के एचओडी थे। उन्होंने, मैंने उनसे जिक्र किया कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो उन्होंने बोला कि तुम दिल्ली से हो तो तुम मेरठ क्यों नहीं आ जाते। मैंने कहा सर मेरठ, अब उस वक्त मेरठ का नाम जब आपके जहन में आता है तो क्या आता था, वहां क्या होगा,
0: वहां क्या होगा। सही कहा आपने,
1: वहां क्या होगा सर? मतलब मैं मुंबई आया हूँ, दिल्ली छोड़कर आप मुझे दिल्ली के पीछे बुला रहे हैं मेरठ। बट उन्होंने बोला कि वहां पर एक बहुत बड़े लेवल पर एक स्ट्रक्चर खुल रहा है और एक बार तुम वहां पर आओ देखो
0: जी,
1: अगर तुमको अच्छा लगता है
0: काम करो
1: काम करो। तो मैं इसी मन से गया था कि
0: देख लेते हैं
1: क्या है, दिल्ली मेरा घर है तो यही सोच के घर चले जाएंगे और आ जाएंगे। लेकिन जब मैं गया और वहां की एनर्जी जो मुझे मिली और जो मैंने स्ट्रक्चर देखा, वहां के लोगों से मिला जो इसके पीछे थे, तो मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी नजर आया कि जहां मुझे लगा कि यहां मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। तो मैंने सर का वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। फिर वहां पर यंग लोग आते थे
0: जी,
1: तो हमारा जो अनुभव है जो हमने सीखा है हम उसको आगे रखते थे और 6 महीने के कोर्स में हम एक फुल लेंथ नाटक भी करते थे और फिल्मों की ट्रेनिंग भी चलती थी और पेंटल साहब से मैं भी सीखता था। तो उस वक्त मैंने वहां पर बहुत ऐतिहासिक नाटक किए जो जिंदगी में शायद मैं भी करना चाहता था, मोहन राकेश का आधे अधूरे, या आप कहें कि आषाढ़ का एक दिन। तो ये सब नाटक हमने, अंधायुग, ये सब नाटक हमने वहां नए लड़कों के साथ किए और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस करी।
0: क्या बात, क्या बात।
1: बस उसके बाद फिर आगे सफर चलता रहा, मैं फिल्में भी करता रहा। 2016 के बाद मैंने वो वहाँ का सफर मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। फिर फ्रीलांस के तौर पर मैं अब टीचिंग, एक्टिंग, एक्टिंग ट्रेनिंग सब चीजें करता हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही है। यूं कहें कि ये जो सफर रहा है माशाल्लाह सुहाना सफर रहा है, इसमें बहुत सारी कहें कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए और हर बात एक कहीं ना कहीं सीख भी देती है। जब आप मुझे अपना परिचय दे रहे थे कि NSDA आप ने किया है, NSDA के साथ साथ मुंबई आप गए, टीवी सीरियल आपने किया, तारक मेहता बहुत बड़ा शो है उसके आप क्रिएटिव हेड रहे और उसके बाद घर वापसी आपने की, यानी कि बैक टू पवेलियन कह सकते हैं। और जब बैक टू पवेलियन आप हुए तो उसमें भी एक अच्छा सफर आपका शुरू रहा, मेरठ में जो IFTI है उसके आप हेड भी रहे। तो ये जो अनुभव है मैं समझता हूं कि आज हमारे स्टूडेंट्स को काम आने वाला है जो उस क्षेत्र में आ रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को स्थापित करें, किन किन बारीकियों को वो सीखें, कहां से सीखें, ये सारी बातें हम आपसे आज जानेंगे जरूर। सो लिसनर्स, हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे एक्टर हैं संदीप जी और बहुत सारी बातें इन्होंने हमें बताई, हमारे श्रोताओं को बताई। तो ये जो अनुभव है हम साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। वक्त है यहाँ पर एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: ए बाबू मोशाय, ये जिंदगी उस ऊपर वाले के हाथ में है रे। कब न जाने कौन इस जमीन से उठ जाए बाबू मोशाय। कुछ ऐसा ही अंदाज था राजेश खन्ना साहब का, और यहाँ डायलॉग मुझे धुंधला धुंधला याद था, तो बस मैंने थोड़ी सी एक्टिंग करने की कोशिश की। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा यही कि अगर आप एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आरजे बनना चाहते हैं, एक एडिटर बनना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक स्कूल की, एक विद्यालय की बहुत खास जरूरत होती है। और शारदा विश्वविद्यालय का शारदा स्कूल ऑफ फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक स्कूल है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स दूर दराज से आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं और अपने आप को आगे लेकर जाते हैं। और इसी बीच में, इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक संदीप महाजन, जो कि पेशे से बहुत अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और प्रोफेशनली इन्होंने एक विधिवत विद्यालय से शिक्षा लेते हुए मुंबई गए। मुंबई के साथ साथ उन्होंने तारक मेहता के आप क्रिएटिव हेड रहे, और उसके बाद IFTI जो कि एक फिल्म इंस्टीट्यूट है मेरठ में, आप वहां पर एज अ HOD के पद पर आपने वहां काम किया। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर। थैंक यू
0: संदीप सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर किसी का ख्वाब होता है

0: चकाचौंध की दुनिया है कि मैं एक्टर बन जाऊं, लोग मुझे जाने पूछें, मेरे साथ ऑटोग्राफ, मुझसे ऑटोग्राफ लें, मेरे साथ सेल्फी लें, इसके पीछे जो मेहनत है वो शायद लोगों को नहीं दिखती, या दिखती है तो आम भाषा में कहें कि वो चाहते हैं कि हथेली पर सरसों उग जाए। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि इसके पीछे जो मेहनत है, जो संघर्ष है, उसके बारे में आने वाली जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको अगर अपने अंदर एक आर्ट नजर आता है, पहले उसको पहचानना बहुत जरूरी है, फिर उसके पीछे की मेहनत उस हिसाब से की जाती है।
0: जी,
1: आपको सिंगर बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, आपको एक्टर बनना है, या आपको एडिटर बनना है, या आपको रेडियो जॉकी बनना है,
0: जी,
1: जैसे कि आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं।
0: थैंक यू।
1: तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक गाइड की जरूरत होती है। कभी कभार आप खुद उसको फाइंड आउट करने लगते हैं तो शायद बहुत समय लग जाता है उसको करने में। इसीलिए ये विद्यालय आपको काम आते हैं। जैसे आपने बताया कि शारदा का खुद एक फिल्म इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। करते करते आपको समझ में आता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना बट ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि क्रिकेट की दुनिया में होता है, रोहित शर्मा जो हमारे कैप्टन हैं, वो अपने टाइम पे ना बॉलिंग किया करते थे और उनको बॉलिंग करना पसंद था, वो बैटिंग नहीं करते थे इतनी। तो उनके कोच ने एक बार उनको बैटिंग के लिए ओपनर भेज दिया, तो उस वक्त जो उन्होंने किया वो आज हिस्ट्री बन चुका है। अब वो टॉप के बैट्समैन बन चुके हैं। वो बनना चाहते थे बॉलर,
0: जी,
1: लेकिन उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि वो एक बेस्ट बैट्समैन है।
0: जी,
1: तो इसी तरह की आर्ट जो आपके अंदर चाहिए, वो मेहनत ऑफ कोर्स है, जैसा कि आपने कहा, तैयारी चाहिए, लेकिन उस तैयारी के पीछे आपको जो गाइडेंस चाहिए वो एक टीचर ही दे सकता है।
0: बहुत खूबसूरत। यानी कि खुद को पहचानो।
1: जी,
0: यानी कि उस इंसान को पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही साथ जो आपने बात की, गुरु की जो महिमा है, जो उसकी काबिलियत है कि दूसरों को पहचानना, उसके बाद उस बात को सुने, जाने, समझे और फिर वो अपने आप को आगे लेकर जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और सर, आज के समय में हम देखें कि लोग अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते, अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहते,
1: समझ में नहीं आता है कि वो अपने ऊपर मेहनत करे क्या। जब आप बोलते हैं ना कि मेहनत करना है, तो वो सोचते हैं कि भाई आप हमें बता दो, हम कर देंगे।
0: मेहनत की सुनने को भी राजी नहीं है।
1: नहीं, मतलब आप हमें बता दो, आप हमें बता दो कि हमें ये चश्मा उठा के यहां से यहां रखना है, हम रख देंगे।
0: जी,
1: बट मेहनत वो नहीं है ना। मेहनत सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेहनत ओवरऑल पर्सनैलिटी पे है। आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: अच्छी संगत में आना पड़ेगा, अच्छा देखना पड़ेगा, अच्छे थॉट्स रखने पड़ेंगे। ये जैसे कि एक कहे कि एक तरह की डेली प्रैक्टिस है, सिर्फ एक दिन का काम नहीं,
0: क्या
1: एक महीने का काम नहीं।
0: बहुत खूबसूरत।
1: ये ताउम्र आपको जिंदगी में रखना पड़ेगा।
0: सर, इसी बात से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि लोगों का धैर्य टूट जाता है।
1: जी,
0: कई लोगों ने इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत समय दिया है और आज वो अपना काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, देना चाहेंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का जिक्र आता है। एनएसजी से वो पास आउट रहे, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब उन्होंने की, छोटा छोटा अभिनय किया, और आज जब वो हम देखते हैं कि वो एक ऐसे मुकाम पर है कि उनका एक उदाहरण दिया जाता है।
1: जी जी।
0: तो लोगों को लगता है कि, स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने छोटा सा कोर्स कर लिया और उसके बाद हम मुंबई चले जाते हैं, और समय जब ज्यादा लग रहा होता है, या हो सकता है कि वो उन्होंने अपने आप को पकाया नहीं है, तो फिर लगता है कि नहीं यार, हम ये नहीं कर सकते, मैं इस लाइन के लिए नहीं हूँ। तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे, कितना धैर्य बहुत जरूरी है?
1: बहुत जरूरी है धैर्य। देखिए, एनएसडी की मजबूरी है कि वो एक एन नंबर ऑफ बच्चे ही ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी संस्था है जहाँ से ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं। इसी तरह से एफटीआई पुणे है या एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा है, अब तो बहुत सारे वेन्यूज खुल गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा, जैसे मनोज वाजपेयी जी ने एनएसडी में 3 बार ट्राई किया, उनका नहीं हुआ,
0: नहीं हुआ,
1: आज वो भी तो सफल एक्टर है।
0: सफल एक्टर, सही बात, सही बात
1: है कि नहीं। उन्होंने अपने आप को खुद तैयार किया है। उनको एक उनके गुरुजी मिले, वो दिल्ली के रहने वाले नहीं है, वो दिल्ली शहर में आए, उन्होंने अपनी मेहनत करी, पकाया, और वहां से उठा के उनको ले गए शेखर सुमन जी। याद है उनकी पहली फिल्म शेखर सुमन जी के साथ जो उन्होंने करी थी, और उसके बाद रामू जी ने वो फिल्म देखी, और उस फिल्म के 4 साल बाद मनोज वाजपेयी रामू सर से मिले, और रामू सर उनको 4 साल से ढूंढ रहे थे। कमाल की बात है ना। और उनके सामने बैठे रामू सर, उनको पहचान नहीं पाए कि मैं तुमको ढूंढ रहा हूं। वो करेक्टर इतना जबरदस्त किया था उस फिल्म में उन्होंने। तो कहने की बात यह है कि आप अपने आप को तैयार, डेफिनेटली हमें गाइडेंस की जरूरत है कि तैयारी कैसे की जाए. लेकिन आज वेन्यूज बहुत खुल गए हैं. आज YouTube का जमाना है, आज इंटरनेट का जमाना है. आपके लिए पढ़ने के लिए सामने सब कुछ रखा हुआ, लेकिन हम देखते क्या हैं? रील्स.
0: सही बात है, सही बात है.
1: रील्स. तो आप जब रील्स देख रहे हैं और फेसबुक को स्क्रॉल करे जा रहे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है?
0: जी,
1: चीजें आगे करते जाओ, बस आगे करते जाओ, बस आगे करते जाओ. ठहराव और धैर्य खत्म.
0: क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. मुझे लगता है कि दोस्तों जिस तरीके से एक आंसर की उम्मीद थी, बहुत खूबसूरत सर ने जवाब दिया है कि ठहराव, यानी कि जिस तरीके से हम बोलते हैं वहाँ पॉज की बात होती है, और जिंदगी में ठहराव की बात होती है, यानी कि सोच के समझ के एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है. अगर आपको लगता है कि यहाँ मेरी कोई कमी पेशी रह गई है, तो निश्चित तौर पर जो आपके टीचर रहे हैं, जो उस्ताद रहे हैं, उनसे जानिए, समझिए, अपनी कमी को खूबी में तब्दील करने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर फतेह आपकी जरूर होगी और आपकी मंजिल आपको मिलेगी जरूर. और क्या है खास जानेंगे जरूर संदीप महाजन जी से, जो कि बहुत अच्छे अभिनेता हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं इस इंडस्ट्री के बारे में. ये सारी बातें हो रही हैं सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर.

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ, और मेरे साथ जुड़े हुए हैं संदीप महाजन जी, जो कि बहुत अच्छे एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, थिएटर एडुकेटर हैं, और बहुत समय इन्होंने इंडस्ट्री में दिया है, अपने आप को तपाया है, अपने आप को झोंका है, और उसके बाद इंसान एक कहते हैं ना कि बनकर निकलकर निखरकर सामने आता है। राह से भटकना इंसान को, मैं समझता हूं कि पीछे लेकर चला जाता है, और राह पर चलेंगे, समय देंगे, जिसके बारे में सर ने एक एग्जांपल दिया मनोज वाजपेयी का, जिक्र मैंने किया नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का, कि उन्होंने अपने ऊपर समय लगाया, एक रास्ते पर चलते रहे, मेहनत की, वर्क अपने ऊपर किया, तब जाकर वो आज अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। सर, जो लोग भटक जाते हैं, जो अभी आप और हम जिक्र कर रहे थे कि कहीं हम रास्ते से भटक तो नहीं रहे, उनको लगता है कि मैं एक्टर बनने आया था, एक्टर में मेरा कुछ हो नहीं रहा, एडिटिंग कर लेते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं, तो ये जो लाइन चेंज करते हैं लोग बाग, ये कितना सही है कितना गलत है?
1: देखिए, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। मुंबई शहर जब आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके सामने आती है वो है सर्वाइवल। तो सर्वाइवल के तौर पर बहुत सारे एक्टर बहुत पीछे रह जाते हैं, तो इसलिए फिर वो फील्ड चेंज करते हैं, क्योंकि उनको वहां सरवाइव करना होता है। एक तरह से कहें इसमें कुछ अच्छा भी होता है, और एक तरह से कहें कि कुछ चीजें पीछे भी रह जाती हैं। जब कुछ वो और चीज ढूंढते हैं तो उसमें उनको एक नई चीज मिलती है, कि इसमें लगता है कि हाँ, ये चीज तो मैं बहुत अच्छी कर सकता हूं
0: जी,
1: तो वो चीज वो कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप थोड़ा ब्रेक लें, आउट ऑफ द बॉक्स जाएं, यानी कि उस शहर से बाहर निकले। क्योंकि मेरा मानना यह है, एक्टिंग सिर्फ बॉम्बे में नहीं होती है।
0: क्या बात,
1: आप इस दुनिया में आए हैं, ये दुनिया बहुत बड़ी है, वेन्यूज बहुत बड़े हैं, सिर्फ इंडिया में एक्टिंग नहीं होती है, इंडिया से बाहर भी एक्टिंग होती है। एक लिमिटेड साधन फिल्म नहीं है, वेब सीरीज नहीं है, अगर वाकई में आपको एक्टिंग करनी है तो आप अपना छोटा मोटा थिएटर ग्रुप खोल के भी एक्टिंग कर सकते हैं। आपको एक्टिंग से प्यार है कि नहीं है, सवाल ये है।
0: क्या बात, जो आधार है, एक्टिंग
1: आधार है। आपके मन में अगर ये बात आ गई कि यार इसके बगैर तो मैं जी ही नहीं सकता,
0: है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत,
1: तो आप रास्ते निकालेंगे।
0: क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिक्र आता है कि थिएटर का, रंगमंच का, मैं समझता हूँ कि रंगमंच से अगर आप निकल कर गए हैं तो निश्चित तौर पर आप एक सशक्त अभिनय कर सकते हैं और मजे हुए कलाकार हैं। कुछ लोगों को हमने देखा है कि बहुत शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं, टीवी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में, सगे संबंधी किसी के हैं, उन्होंने रंगमंच किया नहीं है, थिएटर किया नहीं है, तो हम एज अ दर्शक हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है। एज अ टीचर आप क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र के बारे में, उन लोगों के बारे में जो रंगमंच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो बिना रंगमंच के, बिना थिएटर के काम कर रहे हैं?
1: देखिए, सब काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है,
0: काम कर रहे सही बात है।
1: और देखिए, जिनको प्यार है वो जो भी काम कर रहे हैं उस पर अपना एक सीखने का दायरा बना लेते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा जो टीवी में काम कर रहे हैं वो अच्छे एक्टर नहीं काम कर रहे हैं, और बहुत सारे एक्टर ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, और कुछ टाइम बाद काम करने की फिर वो काम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अंदर से खुशी नहीं मिलती है उनको।
0: तो यानी कि आप सीधे लफ्जों में अगर हम कहें तो मैं समझता हूँ कि पहले अपने आप को तपाना बहुत जरूरी है। आपने, आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ कि अगर आप टीवी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम करते करते सीख जाते
1: हैं,
0: कुछ लोग तो ताउम्र गुजर जाती है, सीखते ही नहीं है, और दर्शकों को उनका अभिनय पसंद नहीं आता, इसलिए चल रहे हैं कि आपके सगे संबंधी इंडस्ट्री में आपको सिर्फ काम मिल रहा है।
1: जैसे कि आप इस प्रोफेशन में हैं, आप जब रात को सोते हैं तो एक अच्छी नींद सोते होंगे कि मैंने आज जो काम किया उस प्रोसेस को आप एंजॉय करते हैं
0: जी।
1: तो इट्स अ प्रोसेस ओरिएंटेड वर्क। अगर आप इस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं ना तो काम सीखेंगे आप जरूर, आप रोज सीखेंगे। लेकिन आप सिर्फ पैसों के पीछे भागेंगे तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे।
0: क्या बात है। सो लिसनर्स, कहने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ यही है, सर का आशय यही है, आप कोशिश करिए, मेहनत करिए, निश्चित तौर पर कोशिश मेहनत के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो रुपया आपके पीछे पीछे आएगा, जो कि जरूरत है, नो डाउट रुपया आएगा, एक न एक दिन आपको रुपया मिलेगा और आपको आपके काम से जाना जाएगा, काम होगा तो निश्चित तौर पर दाम भी आपको मिलेगा जरूर, और वक्त ये आता है कि मुंह मांगी कीमत आपको मिलती है और डायरेक्टर देते भी हैं, तो इसलिए बस अपने आप को तराशिए, अपने आप को तलाशिए कि मुझे किस दिशा में जाना है, एक्टर बनना है या डायरेक्टर बनना है या रेडियो जॉकी बनना है। शारदा विश्वविद्यालय भी आपको ऐसी कोर्स ऑफर करता है। और बस यही कहूँगा कि अगर आप इधर उधर कहीं भी यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का माहौल देखिए, फैकल्टी से मिलिए, लोगों से मिलिए, प्लेसमेंट के बारे में जानिए। और जब इस तरीके के गेस्ट हमारे यहाँ विजिट करते हैं, संदीप महाजन जी जैसे जो कि खुद का अपना एक थिएटर ग्रुप भी चलाते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे जरूर। सो बस कहूंगा सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जानी, न ढाल से न तलवार से बंदा डरता है, तो सिर्फ परवरदिगार से।
1: सर हमने भी अभिनय की जब दुनिया में आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा मिमिक्री मैं भी कर लेता हूँ। अभिनय तो नहीं है लेकिन हाँ नो डाउट यहाँ से मेरी रोजी रोटी चल रही है। अभिनय हम जरूर सीखना चाहते हैं और जो बारीकियां आपने हमें बताई हैं, हमारे श्रोताओं को बताई हैं, वो बारीकियां मैं भी अपनी जिंदगी में ध्यान रखूंगा। लिसनर्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, संदीप महाजन जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बहुत अच्छे एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, थिएटर के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। NSD से आप पास आउट रहे हैं और IFTI पुणे से भी आप पास आउट हैं। तारक मेहता का एक क्रिएटिव हेड के तौर पर आपने वहां काम किया, फिर आप एज अ डायरेक्टर IFTI जो कि मेरठ में एक इंस्टीट्यूट है सर, वहां पर भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं। क्योंकि वक्त का इशारा हो चुका है, वक्त का जब इशारा होता है तो हमें लेनी होती है अनुमति और एक सारांश निकालना होता है, एक निष्कर्ष निकालना होता है, ये चर्चा हमारी कैसी रही और हम आपकी तरफ से एक संदेश जानना चाहते हैं। लेकिन सर बिफोर संदेश, बिफोर मैसेज, मैं ये जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री जिस तरीके से हमें दिखती है बहुत साफ सुथरी, ऐसा है भी नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई वाली बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि शोषण भी कहीं ना कहीं होता है, चाहे वो ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही कुछ ऐसा हो रहा है, लड़के भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, कहीं कहीं सुसाइड कमिट कर लेते हैं, हताशा भी है, परेशान भी है। तो इस तरीके के माहौल से कैसे वो अपने आप को बचाकर आगे बढ़े। कल परसों मैं एक सुन रहा था, उपासना सिंह जी जो कि बहुत बड़ी एक एक्टर रही हैं, कहती हैं कि मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा कि मुझे आपसे फेवर चाहिए और वो फिल्म को उन्होंने ठुकराया, अनिल कपूर के साहब के अपोजिट वो फिल्म थी, और वो कहती हैं कि काश मैं, मेरे साथ वो हादसा ना होता तो मैं आज अनिल कपूर की एक्टर होती। हादसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि कुछ गलत आशा की गई थी उनके साथ, गलत काम की उम्मीद की गई थी, जिस मैं यहाँ अपने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर रख रहा हूँ। तो मैं कहना सिर्फ यही चाहता हूँ कि किस तरीके से एक इंसान अपने आप को आगे लेकर जाए और इस माहौल से कैसे बचाकर वो अपने आप को इंडस्ट्री में स्थापित करे।
2: देखिए सबसे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दूँ, मैंने NSD की TI कंपनी में जॉब किया था
1: जी,
2: रेपेटरी कंपनी है उनकी
1: जी,
2: उसमें मैं जॉब करता
1: जी जी जी।
2: अब आपकी बात पर आते हैं, देखिए ये आपके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है
1: जी,
2: मैं क्या करने आया हूँ, मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। शॉर्टकट वही लेता है जिसको अपना रास्ता खुद निकालना नहीं आता है या जो अंदर से कमजोर होता है। उस वक्त जरूर आपको ये लगता है कि मैं इसका एक्टर होता और मैं उसका एक्टर होता और मैं इसका एक्टर होता। आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपना रास्ता खुद निकालिए। आपको बुरे लोग मिले हैं तो अच्छे लोग भी मिलेंगे
1: जी,
2: पेशेंस रखिए। यह आपका निर्णय है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। जैसा कि आपने उनका उपासना जी का एग्जांपल दिया और उन्होंने वो छोड़ा, वो उनका फैसला था और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं उनको रिग्रेट नहीं होगा कि उन्होंने वो नहीं किया। अनिल कपूर नो डाउट खुशी होती उनके साथ काम करते, लेकिन इस कीमत पे काम करना
1: सही कहा, किसी को गवारा नहीं है।
2: अगर उनको गवारा नहीं है, ये किस फील्ड में नहीं होता, सभी फील्ड्स में होता है। डिसीजन आपका है, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता है, आपको कोई आपका हाथ नहीं पकड़ता, आपके सामने एक ऑफर रखते हैं। ये किस फील्ड में नहीं होता, सभी फील्ड्स में होता है। ये आप पे निर्भर करता है, आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए, जिंदगियां खत्म नहीं हो जाती है।
1: क्या बात है। हाँ हम तो हिल गए क्योंकि ऐसा भी होता है, ये जानना समझना बहुत ज़रूरी था और आपने वाकई बखूबी इस सवाल का एक आंसर रखा कि जिंदगी हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन इंसान को सोच के समझते हुए आगे बढ़ना है और अपना भी ख्याल रखना है और एक अच्छे समाज का निर्माण करना है।
2: बिल्कुल सर, जैसे कि मेरा खुद का अपना थिएटर ग्रुप है,
1: प्लीज बता रहे
2: हैं थिएटर स्टूडियो करके।
1: हाँ
2: ये ग्रुप कोई इंस्टीट्यूट नहीं है और मैं यहाँ पर कोई एक स्ट्रक्चर के तौर पे क्लासेस नहीं लेता हूँ। मैं अपने इस आर्ट को आगे फॉरवर्ड करना चाहता हूँ जो मैंने इतने सालों में एक गुण सीखा, क्योंकि मैं जब सीख रहा था तो इस कमी, ये कमी मुझे महसूस होती थी कि कोई आकर मुझे बताए कि मैं किस रास्ते पे जाऊं, लेकिन किसी के पास समय नहीं होता था। तो वो कमी मैं, मेरे को महसूस होता है कि मैं जितनों को दे सकता हूं मैं दे दूं। तो मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं, मैं मुझसे कहते हैं कि सर मुझे एक्टर बनना है, तो सबसे पहले मैं उनके अंदर झांकने की कोशिश करता हूं कि क्या वाकई में वो एक्टर बनना चाहते हैं
1: जी,
2: या सिर्फ वो फेम की वजह से आ रहे हैं।
1: शौकिया जी,
2: ये भ्रम तोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एक एक्टर की जिंदगी में 24 घंटे मेहनत है।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत सर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जिस क्षेत्र में आप चल रहे हैं स्टूडेंट्स को जो आप तराशते हैं, निखारते हैं, ये जो सिलसिला है निरंतर चलता रहे। और आपका संपर्क सूत्र नंबर यानी कि कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं के लिए जो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकें, तो आप प्लीज अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए ताकि वो थिएटर करें, आपके पास आए, आपसे सीखें।
2: जी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9968135423। इंस्टाग्राम में अकाउंट है कैमरा एंड थिएटर स्टूडियो के नाम से ही। और साथ ही साथ मैं जाऊंगा कि मैं शारदा जी के साथ भी जुड़ूं, उस यूनिवर्सिटी, इस फिल्म स्कूल के साथ भी जुड़ूं, और इस आर्ट को अगर मैं किसी भी तरह क्या आगे दे सकता हूं तो मैं देना चाहूंगा।
1: बहुत खूबसूरत सर, आपने मेरे मन की बात कह दी। और यही मैं जानना चाह रहा था कि शारदा विश्वविद्यालय का जो फिल्म एंड एंटरटेनमेंट स्कूल है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात रख दी कि आप यहां से जुड़ना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप जैसे टीचर जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने तरफ से बहुत कुछ हीरो को निकाल कर लेकर आ पाएंगे और जो कि इंडस्ट्री में कुछ अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। जी हाँ, अगर आप कुछ हमसे कहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो 01204060205 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो शारदा विश्वविद्यालय का फिल्म एंड एंटरटेनमेंट स्कूल आपका बाहें फैलाए इस्तकबाल करता है, जहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा संदीप महाजन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी बातें आपने कही। जी प्लीज कुछ कहना
2: चाहते हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं या आप हीरो बनना चाहते हैं, एक्टर कैरेक्टर के अंदर फाइंड आउट करता है। फिल्म करेक्टर से बनती है, हीरो से नहीं, क्योंकि हीरो की जिंदगी बहुत छोटी होती है।
1: क्या बात है, ये देखिए देखिए, ये छोटी छोटी बातें है लिसनर्स, जो अगर आपने इन बातों को गांठ बांध लिया तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी में चार चांद लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, हमारे स्टूडियो में आप आए, लिसनर्स को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आके।
1: थैंक यू सर, ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम लगाता हूं और बस यही कहता हूं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। टाटा बाय एंड टेक केयर, नमस्कार।

राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
1: हे भैया, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
2: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना कहलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
3: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
2: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
3: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
2: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं, हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं। और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है। हाँ,

0: ये बात है, तो हम बच्चे भी मच्छरों से दुश्म दुश्म लड़ने के लिए तैयार हैं।
1: क्या कहा तुमने? Kids want to know, Miss मच्छर, कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
2: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
0: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: जाओ टीम तारा, जहाँ भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
1: टीम तारा है भैया।
2: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
0: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
1: गुड बाय।

0: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो कौन?
1: नमस्कार, हम दस बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
2: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
1: जल्द मिलते हैं।
0: हेलो हेलो हेलो,
3: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
4: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में।
5: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: राम राम, दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की। मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से, इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर पहुंचे, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। यातायात के नियम कानून का अच्छी तरीके से पालन करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:12 17 तारीख यानी कि शुक्रवार का दिन, फ्राइडे का दिन। मौसम का मिजाज क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में आज यानी कि 17 जुलाई 2026 का मौसम मुख्य रूप से बादलों से घिरा और अत्यधिक यानी कि मैक्सिमम उमस भरा रहेगा और उमस की वजह से दिक्कतें परेशानियां लोगों के सामने बहुत ज्यादा आ रही है, बच्चों के सामने आ रही है और यहां तक कि जानवर भी परेशान विचलित होते हुए नजर आ रहे हैं। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। कहने का मतलब यही कि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में आते जाते अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, क्या खाएं क्या न खाएं, किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाकर आप और हम रखें, इसके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद, अंतराल के बाद। सो कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ, सवी और सुरेंद्र कौर और शाशत गिल की आवाज में अग बनिया ब्यूटीफुल ट्रैक, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: टीबी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीबी यानी एमडीआर टीबी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: गगन खोखरी फतेह।

0: मैरी सुशीला, तेरो बालक ऐसो रो रहे हो है, भूखो है का?
1: हाँ भूख ही लग रही होएगी।
0: तो यार शहद दे दे।
1: हाँ तू दो मिनट बैठ, में लेके आई।
2: मैं पागल वागल हो गई है का? तो उससे कितनी बेर बोली है कि 6 महीने को होने से पहले बालक है, माँ के दूध के अलावा कुछ और न देना चाहिए। ये बालक की सेहत को घना नुकसानदायक है।
1: संगीता की भी तो बालक हुआ हो, वो तो शायद देख रही है अपने बालकन ने जब वाके दूध न उतर रहो।
2: डॉक्टर की बात तो तेरी बुद्धि में पता न क्यों घुसना रही है, वाने कही ना यू सब देने से बालक बीमार हो जावे। बे मतलब के काम करवा लो बस। बालक के स्तनपान करवाने से बालक की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी होवे, जासु बालक संक्रमण, एलर्जी और बाकी बीमारी से दूर रहवे। बालक में हड्डी वाली बीमारी होने का भी खतरा कम रहवे और माँ बालक के संबंध में मिठास भी आवे। और स्तनपान न करवाने वाली महिलाओं में जल्दी गर्भाधारण करने की संभावना बनी रहे, खून की कमी और डिलीवरी के टाइम पे अधिक रक्तस्राव की भी संभावना बनी रहे, स्तन और अंडाशय कैंसर का भी खतरा ज्यादा होवे। तो इसलिए अपने बालक के स्तनपान ही कराएं और 6 महीने का होने से पहले बालक के सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।
3: यूनिसेफ और सुरू शारदा 90.8 FM की तरफ से जनहित में जारी।
4: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: लक्षण, इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक,
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
5: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके 17 तारीख है और घड़ी बता रही है 9:34:54। वक्त हाथ से रेत की माफी फिसलता चला जाता है, इसलिए वक्त पर सारे काम करेंगे तो मुझे लगता है कि एक ना एक दिन आपका वक्त जरूर आएगा। जी हाँ, अब मैं बात करने जा रहा हूँ, अभी एक ऐसी परीक्षा हुई जिसके बारे में बहुत चर्चाएं हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीट 2026 की। पेपर पहले लीक हुआ, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें हस्तक्षेप किया और परीक्षा बहुत अच्छी तरीके से संपन्न कराई गई। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट पर सबकी निगाहें थीं, सबकी निगाहें हैं कि रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट इस बार थोड़ा यूँ समझ लीजिए कि जो परसेंटेज है वो थोड़ा हाई गई है और जिसकी वजह से थोड़े लोग परेशान भी हैं, क्योंकि एक रिकॉर्ड हमें ये बता रहा है। एक सज्जन से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है और जो रिजल्ट आए हैं जो पास हुए हैं उनको बहुत बहुत तेरी दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे रिजल्ट्स में टॉप 10 जिन लोगों ने किया, उस कहानी को जब मैं पढ़ रहा था कि साधन संसाधन बहुत सारी चीज़ें नहीं थी उनके पास, अभाव था। कोई कहीं किसी ग्रामीण परिवेश से आता है, ग्रामीण परिवेश का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि शायद वहाँ साधन नहीं है, कुछ संसाधन नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में कहाँ कहाँ तक नेट पहुँच चुका है, बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, कनेक्टिविटी बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज थोड़ी कमी है जिसकी वजह से दिक्कतें परेशानियाँ हो जाती हैं। तो शहरों के विपरीत गांव के बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, तो उन बच्चों को बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले समय के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं। आप अच्छा करें, बेहतर करें। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।
6: बुजर मासूम शर्मा, सिंगर मासूम शर्मा, सॉन्ग नेम इज गच लागे, ऑल योर सुरुशा द 90.8 एफएम, सो लेट्स एंजॉय इट।

0: और डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
1: आई पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
0: वो
1: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
2: क्या क्या हो बेटिया?
3: डॉक्टर साहब
4: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपके ही देन है।
5: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
1: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
3: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
4: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
7: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
8: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं गगन आपके साथ, आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:40 हो चुके हैं, 17 तारीख है हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें की, अब बात करते हैं नीट के एग्जाम के बाद यानी कि भागदौड़ शुरू होगी, काउंसलिंग शुरू होगी, एक अच्छे कॉलेज की तलाश होगी और भविष्य के लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते मुस्कुराते आप आगे बढ़ते रहिए, जिंदगी को सरल सुगम आसान बनाइए, टेंशन न लेने का न टेंशन देने का। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अक्सर होता क्या है कि फ्रस्ट्रेशन अवसाद से ग्रसित आप हो जाते हैं और उसके बाद तनाव आपको घेर लेता है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, किसी से बात करने का मन नहीं करता, किसी का फ़ोन उठाने का मन नहीं करता वगैरह वगैरह। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना होगा। चलिए हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए। अब बात कर लेते हैं मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे मौसम में क्या खाएं क्या ना खाएं ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ जिसका छोटा है कि ये हमारी क्या बोलते हैं फ्रीडम, हाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच, नहीं नहीं फ्रीडम मतलब यहाँ सिर्फ फ्रीडम आएगा। अच्छा मतलब ज्यादा बोल गया मैं। हाँ तो यहाँ मतलब ये आज़ादी का मामला है, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है यहाँ कुछ नहीं चलेगा, यहाँ डॉक्टर जो कह रहे हैं वो बातें चलेंगी। जैसे कि खाने पीने के मामले में उबलता हुआ पानी आप पीजिए, साफ पानी पीजिए, ताज़ा भोजन खाइए, इम्यूनिटी को तंदुरुस्त बनाकर रखिए और अपनी स्किन का भी ध्यान रखिए, हाथ धोना ये एक अच्छी आदत है, मच्छरों और कीड़ों से अपने आप को बचा कर रखिए, पानी जमा ना होने दें, मच्छरदानी का उपयोग, अरे प्रयोग प्रयोग होता है, अच्छा ठीक है प्रयोग करिए, उपयोग करेंगे तभी आप प्रयोग कर पाएंगे। कपड़ों और घर की सुरक्षा यानी कि सूखे और हल्के कपड़े आप पहनिए, घर की साफ सफाई का ख्याल रखिए और आजकल भी देखा जा रहा है कि अगर आपका वायर इलेक्ट्रिक वायर कहीं से शॉर्ट है जहां से चिंगारी उत्पन्न हो सकती है, ध्यान रखिएगा आग की घटनाएं भी घट रही हैं, इसके बारे में भी बातें करेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुर शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: जान लेना, समझ लेना, बहुत बहुत बहुत जरूरी है। यूपीआई सरकार क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है, क्या क्या खास होने जा रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पेटीएम के जरिए, गूगल पे के माध्यम से बहुत जल्द हम पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अब अपडेट सुनने में आ रही हैं। ध्यान दीजिएगा, यूपीआई के इस्तेमाल पर MDR शुल्क लगाने की तैयारी में है सरकार। रिपोर्ट्स के अनुसार ये चार्ज, ध्यान दीजिएगा, बड़े व्यापारियों पर लग सकता है। इसकी वजह से 90% छोटे और मध्यम दुकानदार इसके दायरे से बाहर होंगे। इस बात को ध्यान रखेगा, नजरअंदाज मत करेगा और अफवाहों से अपने आप को बचा कर रखेगा। और यानी कि वही बात ये भी करती है सरकार कि आम लोग पहले की तरह फ्री में UPI इस्तेमाल कर पाएंगे।
1: हाँ, ऐसे समय में कुछ कहते हैं ना, बैच गंगा में हाथ धोने का प्रयास करेंगे, अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। कुछ लोग अगर आपके कहते हैं ना पेटीएम ये वो, तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा ऐसी खबरों के जरिए उनका, क्या क्या कहते हैं,
0: हाँ मतलब हम मुंह बंद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सर, ये हमारे पास सटीक जानकारी है और आप हमें परेशान ना कर रहे, वरना हम आपकी शिकायत कर सकते हैं। चलिए, शिकायत तो हमें भी है भारतीय क्रिकेट टीम से, क्योंकि क्या खास हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। खास बात यह कि कल कॉडिफ में जो दूसरा वनडे खेला गया इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज को बराबर, बिल्कुल सच बात है, 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा कर दिया है। तो आने वाले समय के लिए लक लक बधाई।
1: अजय ढुनुक
0: सुन लो यार, टच बॉडी, ब्यूटिफुल ट्रैक, म्यूजिक डायरेक्टर भीम्स सेसीरोलियो, सिंगर्स पवन सिंह एंड जॉनिता गांधी, लिरिक्स वायु श्रीवास्तव।

0: लूंगी पोर।
1: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
2: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खाते भी तक कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
1: हाँ
2: चलो धूम मचाते हैं।
1: फिक्स।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इंकलाबी जिद्दी फ्रॉम द मूवी गांधी टॉक्स, और इसको धुन से सजाया है AR रहमान, वोकल्स श्रेया घोषाल, लिरिक्स कुमार। ऑल यू सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका दोस्त शशि कपूर। दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया, उसकी पहचान, जांच, IFA, MMS और पौष्टिक भोजन के बारे में। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज का सवाल है, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया निकल आए तो क्या करना चाहिए? क्या केवल कमजोरी दूर करना ही लक्ष्य है या माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है? और सबसे महत्वपूर्ण, IVFCM क्या है और किन गर्भवती महिलाओं के लिए डॉक्टर इस उपचार पर विचार करते हैं? इन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हैं आपके जाने पहचाने सिहतिया सिंह जी और टीकन देवी जी। दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से।
1: भाई शशि कपूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से, बिकॉज क्योंकि जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं गदगद हो जाता हूं, या यूं कहेंगे गार्डन गार्डन हो जाता हूं, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यूं समझ लीजिए कि स्वागत कम ही मिलता है।
0: बिल्कुल, तो स्वागत आपका हो चुका है और अब चलते हैं सवालों की ओर।
1: जी
0: तो सिहतिया जी, शुरुआत एक आसान सवाल से करते हैं। पिछले कार्यक्रम में हमने हल्के, मध्यम और गंभीर एनीमिया का जिक्र किया था, क्या एक बार फिर सरल भाषा में समझाएंगे इन सबको?
1: जरूर। जब खून की जांच में हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का एनीमिया कहा जाता है, और 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो इसे मध्यम एनीमिया कहा जाता है, और 7 ग्राम से कम हो तो ये गंभीर एनीमिया माना जाता है। दोस्तों,
0: यानी जितना कम हीमोग्लोबिन उतनी ज्यादा चिंता।
1: हाँ, क्योंकि इसका असर गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों पर पड़ सकता है।
0: तो क्या मध्यम और गंभीर एनीमिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं। समय पर पहचान और इलाज बहुत जरूरी है।
0: तो दोस्तों, आगे भी बातें होती रहेंगी सिहतिया सिंह जी से और टीकन देवी से, बहुत सारी बातें जानेंगे, लेकिन यहाँ पर सुनते हैं एक छोटी सी कहानी, और ये कहानी सुना रही हैं आपकी अपनी टीकन भाभी। आइए सुनते हैं।
2: ये कहानी है सुनीता की। सुनीता 7वें महीने की गर्भवती थी। कुछ दिनों से उसे बार बार चक्कर आते थे, थोड़ी दूर चलने पर सांस फूलने लगती थी, घर का काम भी मुश्किल लगने लगा था। घर वाले सोचते थे कि गर्भावस्था में ऐसा तो होता है, लेकिन एक ANC जांच के दौरान खून की जांच हुई, रिपोर्ट में पता चला कि उसे मध्यम एनीमिया है।
0: तो भाभी, फिर आगे क्या हुआ?
2: स्वास्थ्य केंद्र में उसकी स्थिति को समझा गया, आगे की सलाह दी गई, परिवार को भी बताया गया कि ये केवल कमजोरी नहीं बल्कि इलाज की जरूरत वाली स्थिति है, यही वजह है कि नियमित जांच बहुत जरूरी है।
0: अच्छा सिहतिया जी, अगर किसी गर्भवती महिला में मध्यम या गंभीर एनीमिया पाया जाता है तो डॉक्टर किन बातों पर ध्यान देते हैं?
1: भाई, डॉक्टर पहले स्थिति की गंभीरता को देखेंगे। अगर एनीमिया आयरन की कमी से है तो उपचार उसी हिसाब से तय होगा। हल्के एनीमिया के मामलों में डॉक्टर इलाज के लिए आयरन की गोली दे सकते हैं, लेकिन मध्यम या गंभीर एनीमिया में आयरन गोली से कम असर या जल्दी सुधार की जरूरत की स्थिति में डॉक्टर IV यानी कि 4th FCM जैसे नस के रास्ते दिए जाने वाले आयरन उपचार पर विचार कर सकते हैं।
0: यानी हर गर्भवती महिला को IVFCM नहीं दिया जाता?
1: बिल्कुल नहीं। IVFCM हर किसी के लिए नहीं है, ये एक चिकित्सीय निर्णय है जो जांच और मूल्यांकन के बाद लिया जाता है।
0: अच्छा सिहतिया भैया, अब जरा जो IVFCM की आप बात कर रहे हैं तो इसको जरा आसान भाषा में समझाइए, ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी ये बात समझ में आ जाए।
1: भाई देखिए, कई बार लोग सोचते हैं कि IVFCM कोई अलग दवा है या कोई बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरल भाषा में समझें तो ये शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने का एक तरीका है जिसमें आयरन नस के रास्ते दिया जाता है। जब किसी गर्भवती महिला में जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पाया जाता है या डॉक्टर को लगता है कि तेजी से सुधार जरूरी है, तब इस विकल्प पर विचार किया जा सकता है।
0: यानी ये सामान्य कमजोरी का इलाज नहीं है।
1: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। केवल थकान महसूस होने से किसी को IVFCM नहीं दिया जाता। पहले जांच होती है, खून की रिपोर्ट देखी जाती है, महिला की स्थिति समझी जाती है, इसके बाद डॉक्टर निर्णय लेते हैं।
0: तो सेहतिया भैया, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि IVFCM हमेशा जांच पर आधारित उपचार है।
1: बिल्कुल सही, यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं कि पहले जांच, फिर सलाह और फिर उपचार।
0: और क्या ये सही है कि IVFCM अपेक्षाकृत कम समय में दिया जा सकता है?
1: हाँ, स्वास्थ्य सुविधा पर डॉक्टर और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में ये दिया जाता है। इसके बाद कुछ समय तक महिला को देखा भी जाता है ताकि सब कुछ सामान्य रहे।
0: क्या ये अस्पताल में भर्ती होकर ही कराया जाता है?
1: जरूरी नहीं, लेकिन ये हमेशा प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर की निगरानी में स्वास्थ्य सुविधा पर ही किया जाता है।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने मन से ये उपचार करवाना ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल नहीं, सही रास्ता हमेशा जांच, डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख है।
2: मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी, कई बार परिवार डर जाता है कि ट्रिप लगी है तो बीमारी बहुत गंभीर होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। IVFCM को एक प्रभावी उपचार विकल्प के रूप में समझा जा सकता है, लेकिन यह केवल डॉक्टर की सलाह और निगरानी में दिया जाता है।
0: टीकन देवी जी, बहुत अच्छी बातें कही आपने। अब सियतिया सिंह जी, एक बात और, कई श्रोता ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आखिर IVFCM पर विचार क्यों करते हैं?
1: क्योंकि मध्यम या गंभीर अनीमिया केवल कमजोरी का विषय नहीं है, ये माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जब डॉक्टर को लगता है कि आयरन की कमी को जल्दी और प्रभावी तरीके से ठीक करना जरूरी है, तब वे IVFCM जैसे विकल्प पर विचार कर सकते हैं।
2: और मैं यहाँ परिवारों से कहना चाहूंगी कि अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे लेकर डर या अफवाहों में ना पड़े। पहले पूरी जानकारी लें, सवाल पूछें, स्वास्थ्य कर्मी की बात समझें।
0: सियतिया भैया, क्या IVFCM का उद्देश्य केवल गर्भवती महिला की कमजोरी दूर करना है?
1: नहीं, इसका बड़ा उद्देश्य माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में योगदान देना है। जब अनीमिया का समय पर इलाज होता है तो गर्भावस्था को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है।
0: यानी फायदा केवल माँ को नहीं, बच्चे को भी हो सकता है।
1: बिल्कुल, स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
0: बिल्कुल, अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल टीकन देवी से जानना चाहूँगा, इलाज में परिवार की क्या भूमिका है?
2: बहुत बड़ी भूमिका है। पहला, गर्भवती महिला की कमजोरी को गंभीरता से लें। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र में नियमित रूप से महिला को ले जाएं, उसमें देरी ना होने दें। तीसरा, जांच में साथ जाएं। चौथा, गोली समय पर और सही तरीके से लेने में मदद करें। पांचवा, किसी परेशानी की स्थिति में स्वास्थ्य कर्मी से बात कराएं। छठा, अगर डॉक्टर IVFCM की सलाह दे तो उसे स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने में मदद करें। सातवा, घर में अच्छा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएं। और आठवां, महिला को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के लिए दोष न दें।
0: सचमुच एनीमिया का इलाज केवल स्वास्थ्य केंद्र की जिम्मेदारी नहीं, पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी है। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जाता है तो क्या आगे भी निगरानी होती है?
1: हाँ, इलाज के बाद भी फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि डॉक्टर से मुलाकात, महिला की पुनः जांच होगी, आवश्यकता होने पर आगे की सलाह दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी में होती है।
0: यानी उपचार के बाद भी संपर्क बनाए रखना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: चलिए, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले IVFCM से जुड़ी कुछ आम धारणाओं की बात करते हैं। अगर किसी गर्भवती महिला को IVFCM दिया जा रहा है तो उसकी हालत बहुत खराब होगी?
1: गलत। IVFCM देने का निर्णय जांच और चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर लिया जाता है। केवल ड्रिप लगने का मतलब ये नहीं कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है।
0: IVFCM हर गर्भवती महिला को लेना चाहिए?
2: गलत। IVFCM हर महिला के लिए नहीं है, ये केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जाता है जहां डॉक्टर को इसकी आवश्यकता दिखाई देती है।
0: अगर IVFCM लग गया तो आगे किसी जांच या फॉलोअप की जरूरत नहीं रहती?
1: गलत। फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण है। उपचार के बाद भी स्वास्थ्य केंद्र की सलाह के अनुसार जांच और निगरानी की जाती है।
0: IVFCM घर पर भी लगवाया जा सकता है?
2: गलत। ये हमेशा स्वास्थ्य सुविधा पर ट्रेंड हेल्थ वर्कर और डॉक्टर्स की निगरानी में ही दिया जाता है।
0: अगर किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को IVFCM दिया गया था तो मुझे भी वही उपचार लेना चाहिए?
1: गलत। हर गर्भवती महिला की स्थिति अलग होती है। उपचार हमेशा उसकी जांच और डॉक्टर की सलाह के अनुसार तय होता है।
0: बिल्कुल। तो श्रोताओं, इसी के साथ प्रोग्राम समाप्ति की ओर है, पर चलते चलते आज की चर्चा से तीन महत्वपूर्ण बातों को याद रखिए। पहली, गर्भावस्था में कमजोरी, चक्कर या सांस फूलने को नजरअंदाज मत कीजिए। दूसरी, नियमित ANC जांच और खून की जांच कराइए। तीसरी, अगर जांच में मध्यम या गंभीर एनीमिया मिलता है तो स्वास्थ्य केंद्र की सलाह का पालन कीजिए। कुछ स्थितियों में डॉक्टर IVFCM जैसे उपचार पर विचार कर सकते हैं।
2: और मेरी तरफ से एक संदेश, खून की कमी को लंबा मत कीजिए, समय पर जांच कराइए, स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए और गर्भवती महिला को परिवार का पूरा सहयोग दीजिए।
1: याद रखिए, समय पर पहचान और सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों के बेहतर स्वास्थ्य परिणाम संभव है दोस्तों।
0: बिल्कुल। तो सेहतिया भैया और टीकन देवी जी कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रसव के बाद की अवस्था यानी PNC के दौरान एनीमिया पर, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी माँ का स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है। और अब दीजिए अनुमति, लेकिन सुनते

0: आप, मैं हूँ गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ। अपने प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। बात होगी नवजात शिशुओं की सुरक्षा। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे पैदा होते ही अचानक बीमार पड़ जाते हैं और परिवार घबरा जाता है। कुछ लोग घर के नुस्खों में लग जाते हैं, कुछ देरी कर देते हैं और कई बार ये देरी बच्चे के लिए खतरनाक हो जाती है। इसलिए आज हमने बुलाया है अपनी गांव-गांव की ज्ञान की पिटारी हमारी टीकन भाभी को। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से भाभी।
1: अरे धन्यवाद भाई, और धन्यवाद रेडियो के उन सभी श्रोताओं को जो बहुत ही जरूरी विषय के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका ये भी शुक्रिया करूंगी कि आपने बहुत जरूरी विषय उठाया है। आज नवजात बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जरा सा भी खतरा लगे तो तुरंत विशेषज्ञ के इलाज की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल टीकन देवी, सही जानकारी हो तो परिवार बच्चे की जान बचा सकता है। इसलिए आज हम बात करेंगे SNCU की। पर ये SNCU है क्या और क्यों जरूरी है भाभी?
1: हाँ, मैं ये आपको बताऊंगी और मैं अपने सभी श्रोताओं को ये जानकारी देना चाहूंगी जो कि समुदाय से हमसे जुड़े हुए हैं और हमारा सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा और स्मार्ट मिलकर इस श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि समाज के हर विषय पर जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है आप लोगों को पूरी जानकारी हो। तो आज बाबू मैं आपको बताऊंगी कि ये SNCU क्या होता है। सबसे पहले SNCU का मतलब है स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट, यानी खास तरह का यूनिट है जो जिला अस्पताल या मेडिकल सेंटर में होता है। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर और नर्सें, खास मशीनें बच्चे की निगरानी करती हैं। यह यूनिट उन बच्चों के लिए है जो समय से पहले पैदा हो जाएं, कम वजन के हों, सांस नहीं ले पा रहे हों या सांस लेने में दिक्कत हो, पीलिया, संक्रमण या तेज बुखार से ग्रसित हों, जो बच्चे दूध नहीं पी पा रहे हैं या बहुत ज्यादा ठंडे या गर्म हों, उनके लिए भी यह यूनिट है। SNCU को ऐसे समझो, नवजात बच्चों की ICU, समझ रहे हैं ना भैया?
0: जी जी।
1: जहाँ हर बच्चा विशेषज्ञों की निगरानी में सुरक्षित रहता है।
0: अच्छा, मतलब गांव के लोग जिसे नाजुक बच्चा कहते हैं वही बच्चा SNCU में ले जाना चाहिए?
1: हाँ, गांव के लोग जिसे नाजुक बच्चा कहते हैं उसे SNCU में जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि नाजुक का मतलब सिर्फ छोटा होना नहीं है। कई बार बच्चा बिल्कुल ठीक लगता है पर लक्षण अंदर ही अंदर बढ़ रहे होते हैं। सबसे खतरनाक बात तो यही है।
0: टीकन देवी, ये तो परिवार को जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए।
1: हाँ, मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ आज भैया, नवजात में नीचे दिए गए किसी भी लक्षण को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसे तुरंत SNCU यूनिट में भेज देना चाहिए। पहला लक्षण, दूध ना पीना या बहुत कम पीना, बच्चा बहुत सुस्त लगे या उसके हाथ पैर ढीले लगे, तेज सांस यानी 60 से ज्यादा प्रति मिनट सांस लेने में मुश्किल होना, धीरे धीरे सांस आना या छाती धसना, लगातार रोना या उल्टा हो जाना या बहुत ज्यादा सोना, जरा जरा सी देर में दौरे पड़ना या फिट्स, शरीर का बहुत गर्म या बहुत ठंडा हो जाना, नाभि में पस पड़ जाना, लालिमा आ जाना या उससे बदबू आना, गंभीर पीलिया खासकर 24 घंटे के भीतर बार बार उल्टी आना और दूध पी के वापस निकालना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं। अगर किसी नवजात में दिखाई दें तो बिल्कुल हल्के में ना लें, उसे तुरंत SNCU यानी बच्चों की जो ICU है ना, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की
0: थी,
1: स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट में ले जाना चाहिए। वहाँ बच्चा डॉक्टर, नर्स और खास मशीनों की निगरानी में रहता है जिससे बच्चे के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है।
0: बिल्कुल आपने सही बात कही और मैं तो डर ही गया था कि जिस तरीके से आप लक्षण बता रहे हैं तो गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन आपने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये अगर लक्षण है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों एक बात याद ये रखना कि नवजात में देरी का मतलब खतरा है, तो इसलिए एक मिनट भी इंतजार मत करना। बिल्कुल श्रोताओं, इसे दिल में बांध लीजिए या यूं कहें कि गांठ बांध लीजिए। खतरे का एक भी लक्षण मतलब सीधा SNCU। टीकन देवी, जब परिवार SNCU पहुंचता है तो वहां क्या क्या होता है?
1: हाँ, जब परिवार SNCU पहुंचता है तो ये पूरा वैज्ञानिक और सुरक्षित इलाज का केंद्र है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं एक एक सेवा के बारे में आपसे बात करती हूँ। सबसे पहली जो सेवा है जो कि SNCU में दी जाती है, वार्मर, यानी नवजात बच्चा जब अपना तापमान नहीं संभाल पाता तो उसे वार्मर में रखा जाता है, जिससे उसका तापमान संतुलित किया जा सके। ऑक्सीजन और CPAP, अगर बच्चे को तुरंत सांस लेने में मुश्किल है तो CPAP से फेफड़ों को मदद मिलती है, यानी बच्चा सांस धीरे धीरे ले पाता है और सही कंडीशन में पहुंच पाता है डॉक्टर्स की निगरानी में। तीसरा, दवाइयां और एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन फैलने ना पाए इसके लिए बच्चे को तुरंत दवा दी जाती है। फोटोथेरेपी, यानी पीलिया के लिए सुरक्षित नीली रोशनी वाली थेरेपी जो बच्चे के पीलिया को दूर करने में मदद करती है। शुगर और फ्लूड मैनेजमेंट, लो शुगर अगर नवजात में हो जाती है तो ये बेहद खतरनाक संकेत होता है, इसकी लगातार निगरानी की जाती है, डॉक्टर्स और नर्स के ऑब्जर्वेशन में बच्चे को रखा जाता है। फीडिंग सपोर्ट, अगर बच्चा खुद से दूध नहीं पी पा रहा या दूध पीने में दिक्कत कर रहा है या दूध को उल्टा निकाल रहा है तो NG ट्यूब से माँ का दूध बच्चे को दिया जाता है, जो कि उसके लिए बेहद कामगार साबित होता है। KMC यानी कंगारू मदर केयर, माँ या पिता बच्चे को सीने से चिपकाते हैं और बच्चे को ऐसा लगता है जैसे माँ उसके बेहद करीब है और बच्चा जल्दी ठीक होने लगता है। निरंतर निगरानी, हार्ट रेट, ऑक्सीजन, तापमान, वजन, हर घंटे में जांच, ये सब होता है इस केंद्र में। परिवार को सलाह दी जाती है कि कैसे दूध पिलाया जाए, कैसे बच्चे की साफ सफाई रखी जाए, कब बच्चे के पास वापस आना है और कब बच्चे के पास समय बिताना है। फॉलो अप डिस्चार्ज के बाद कब दिखाना है ये भी डॉक्टर्स आपको बताते हैं। वहाँ सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है, इतना भी लोगों को अंदाजा नहीं होगा, लेकिन ये सुविधाएं सरकार की ओर से दी जा रही हैं, जिसका हमारे समुदाय के लोगों को जरूर लाभ उठाना चाहिए।
0: जी वाह, इतना सब कुछ एक ही जगह है, लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं होगा, है ना?
1: हाँ बिल्कुल। एक बात कहूँ भैया?
0: जी।
1: सबसे खास बात तो ये है कि सारी दवाएं, सारी सुविधाएं, डॉक्टर और नर्स की सारी निगरानी बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त मतलब आपको बस जानकारी होनी चाहिए और आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकते हैं।
0: मुफ्त, सच में मुफ्त? तो लोग समझते हैं कि अस्पताल में बहुत खर्चा होगा।
1: नहीं जी, ऐसा लोग सोचते हैं पर ऐसा है नहीं। सरकार ने नवजात के इलाज को मुफ्त रखा है और सरकार इस कैंपेन को सामुदायिक रेडियो और स्मार्ट के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा रही है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या शामिल है। पहला, भर्ती। भर्ती होने पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दवाइयाँ, फोटोथेरेपी, वार्मर, CPAP टेस्ट, दूध पिलाने की सलाह और 108 एम्बुलेंस। गरीबी या पैसे की वजह से किसी का इलाज ना रुके, यही सरकार का साफ और सीधा संकेत है।
0: सीधा संकेत है, सीधा संदेश है। तो टीकन देवी, अस्पताल तो करेगा ही, लेकिन परिवार क्या करे?
1: देखो, परिवार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। परिवार को सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए कि सरकार की तरफ से नवजात के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। सबसे पहले बच्चे को कोई भी दिक्कत लगे तो अस्पताल ले जाएं, डॉक्टर की दवा बीच में ना रोकें, KMC जरूर करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, हाथ धोकर ही बच्चे को छुएं, 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को माँ का दूध पिलाएं, फॉलो अप की तारीख को कभी न छोड़ें, डॉक्टर से लगातार संपर्क में रहें।
0: सही बात है, घर की जिम्मेदारी घर वालों की।
1: जी, घर वालों की जिम्मेदारी बहुत बनती है। आज भाई पैटर्न और लो बर्थ वेट बच्चों पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, ये बच्चे ठंड बहुत जल्दी पकड़ते हैं, इन्हें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, बार बार दूध चाहिए और वजन धीरे धीरे बढ़ता है। KMC तो ऐसे बच्चों के लिए वरदान है।
0: टीकन देवी, कई बार बच्चे इसलिए भी बीमार होते हैं क्योंकि गर्भावस्था में समस्याएं थी।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को जरूर करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए मैं अभी अपने सभी श्रोताओं को बताती हूँ।
0: जी,
1: 4ANC चेकअप, IFA की गोलियाँ, TT TD वैक्सीनेशन, रक्तचाप या शुगर की जांच, संस्थागत प्रसव। अगर माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा SNCU में जाने से बच सकता है, यानी बच्चा ICU में, जो कि बच्चों की यूनिट होती है, उसमें जाने से बच सकता है।
0: जी, अगर बच्चा अचानक बीमार हो जाए तो क्या करें टीकन देवी?
1: देखो, बच्चा अगर अचानक से बीमार पड़ जाए तो उसके माता पिता परिवार के सदस्यों को सीधे 108 पर फोन करके एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। ऑक्सीजन, ट्रेंड स्टाफ, स्ट्रेचर और गर्माहट देने के सभी सामान उसके अंदर रहते हैं। बच्चा जब SNCU से ठीक होकर आता है तब भी सतर्कता बेहद जरूरी है। स्तनपान, दवा समय पर, भीड़, संक्रमण से बचाना, साफ पानी और सफाई का ध्यान रखना, और कोई भी खतरा दिखे या कोई ऐसा लक्षण दिखे जिससे बच्चे को परेशानी हो रही है तो तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाना।
0: मतलब इलाज सिर्फ SNCU तक नहीं, घर पर भी जिम्मेदारी उतनी ही।
1: बच्चा परिवार की जिम्मेदारी पहले है, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की और फिर समाज की। परिवार को बड़ी जिम्मेदारी से बच्चे के लालन पोषण पर ध्यान देना चाहिए। सरकार द्वारा मिल रही सभी सुविधाएं जो कि नवजात के लिए जरूरी हैं, उनकी भी जानकारी परिवार को होनी चाहिए। अब जब आप परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार और समुदाय मिलकर बहुत कुछ बदल सकते हैं। जैसे परिवार, समुदाय और सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित जागरूकता कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं को ANC के लिए प्रेरित कर सकते हैं। संस्थागत प्रसव बढ़ाएं, इस बारे में भी बात की जा सकती है। नवजात के खतरे के लक्षण सबको सिखाएं और बताएं कि अगर नवजात में लक्षण दिखे तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाकर एडमिट करें। नाभि पर तेल और घी लगाने की कभी सलाह न दें। स्वच्छता बढ़ाएं। मैं तो यही कहूंगी, जब सोच बदलती है तो पूरा गांव स्वस्थ होता है, और गांव स्वस्थ होता है तो समाज स्वस्थ होता है, और जब समाज स्वस्थ होता है तो पूरा देश स्वस्थ होता है। तभी सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका मोटिव पूरा होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नवजात बच्चा बहुत नाजुक होता है, बीमारी अचानक बढ़ सकती है, इसलिए समय पर इलाज जीवन को बचाता है। SNCU आपकी सरकारी सुविधा है, इसे जानिए, पहचानिए और जरूरत पड़ने पर तुरंत पहुंचिए। आपका एक कदम एक बच्चे की पूरी जिंदगी बचा सकता है।
0: धन्यवाद टीकन देवी, बहुत बहुत धन्यवाद, साथ साथ श्रोताओं का भी। आज आपने एक जीवन रक्षक जानकारी सुनी, इसे याद रखिए और अपने गांव में फैलाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग

भाग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, कार्यक्रम खेत खलियान का उद्देश्य यही है कि आप खेती की नई नई तकनीकों के बारे में जानें, फिर उनका इस्तेमाल अपनी खेती में करें ताकि आपको अधिक लाभ मिले और खेती में आपकी लागत है वो कम हो। किसान मित्रों, भारत के गांव और शहरों में भी आजकल सौर ऊर्जा का उपयोग अब संभव हो गया है। एक समय था जब भारत के अनेक गांवों में बिजली नहीं थी, लेकिन तकनीकी विकास और सौर ऊर्जा की मदद से आज भारत के अनेक गांवों में बिजली है। हालांकि आज भी भारत में अनेक गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है, लेकिन सौर ऊर्जा की मदद से गांव और शहरों में बिजली का उत्पादन काफी तेजी से बढ़ा है और लोग सौर ऊर्जा की मदद से अपने घर को रोशन करने में सफल हुए हैं। किसान मित्रों, सोलर पैनल लगवाने पर सरकार भी आपकी काफी मदद कर रही है, जिसके लिए कुसुम सोलर योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य भारत के किसानों को सोलर पंप लगाकर उनके कृषि व्यवसाय को बेहतर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सस्ते दामों पर सोलर पंप लगाने की सुविधा दी जाती है, जो उनकी कृषि खेती के लिए जल सप्लाई की समस्याओं को हल करता है। इस योजना के तहत किसान भाई कुल लागत का मात्र 10% लगाकर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। किसान मित्रों, कुसुम योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हमारे किसान भाइयों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान करना है। इस योजना के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर डीजल सिंचाई पंपों को सौर ऊर्जा पंपों में बदल रही है। तो जो किसान भाई सिंचाई पंपों को डीजल या पेट्रोल की मदद से चलाते हैं, अब उन पंपों को इस कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा। तो किसान मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कुसुम योजना का लाभ लेना, तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में इस बारे में बात कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो बात रही कुसुम योजना की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और टीना पटौदी, और किस्सा रहेगा जानी चोर का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ज्ञानेंद्र सरधाना और टीना पटौदी से ये रागनी किस्सा था जानी चोर का। किसान मित्रों, भारत सरकार देश के किसानों के साथ ही अब युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर योजनाओं का ऐलान करके युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में सरकार की ओर से पशु मित्र योजना शुरू की गई है। इसके तहत खासकर ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। चयनित युवाओं को पशुओं की चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं के रोग कारण, उनके रोकथाम की जानकारी, टीकाकरण, ब्रीडिंग और आहार का प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थी पशु मित्र के रूप में पशु चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अपने जिले में आवश्यक सेवा प्रदान कर सकते हैं और पशु मित्र के रूप में कार्य कर अच्छी आजीविका अर्जित कर सकते हैं। पशु मित्र योजना के माध्यम से पशुपालक किसानों को टीकाकरण, पशु बीमा, कृत्रिम गर्भाधान और किसान क्रेडिट कार्ड, इन सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके लिए पशु मित्र नियुक्त किए जा रहे हैं जो किसानों को इन योजनाओं का लाभ दिलाने में उनकी सहायता करेंगे। इससे हमारे पशुपालक किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकेगा। पशु मित्र योजना के तहत बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को कार्य निष्पादन के अनुसार निर्धारित मानदेय का लाभ दिया जाएगा। तो जो भी हमारे ग्रामीण युवा पशु मित्र बनना चाहते हैं, वो अपने जिले में जिला पशु चिकित्सालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और इस योजना के बारे में विस्तार से जान करके आवेदन कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना पशु मित्र योजना के बारे में, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और रागनी। कलाकार हैं रविंद्र खालोर और सुनील चौहान। किस्सा रहेगा महाभारत का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रविंद्र खालोर और सुनील चौहान से ये रागनी। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, खेती में पानी की खपत को कम करना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। जल संकट बढ़ रहा है और किसानों के लिए कम पानी में अधिक खेती करना एक चुनौती बन चुका है। सही तकनीक और उपकरणों के इस्तेमाल से, जैसे एग्रीकल्चर स्प्रे मशीन, इसके जरिए हमारे किसान भाई अपनी खेती में पानी की बचत कर सकते हैं और अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। आजकल आधुनिक तकनीकों के उपयोग से हमारे किसान भाई कम पानी में ज्यादा फसल उगा सकते हैं। इसीलिए पानी बचाने के लिए भी हमारे किसान भाइयों को आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन यानी कि बूंद बूंद सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है। इसके अलावा बारिश के पानी का संचय करके सिंचाई के लिए पानी का उपयोग किया जा सकता है। मल्चिंग तकनीक अपनाने से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे सिंचाई की जरूरत कम हो जाती है। तो आजकल जो आधुनिक तकनीकें आ गई हैं सिंचाई की, उनका इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई समय की बचत कर सकते हैं और साथ ही साथ पानी की बचत कर सकते हैं और खेती में लागत कम कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना सिंचाई की आधुनिक तकनीकों के बारे में, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं तरुण वालियान।

तरुण बालियान द्वारा गाए गए इस उपदेश के साथ ही आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

आज उस कमर में बैरी बिशियर चूट गया। मेहरबानो तारा, रोहतास की लाश के लिए कफन तो होती है, मेरे दोस्तों चौगिरदे कोई दिखाई नहीं दिया। आज ऐसी विपदा पड़ गई कि आज कमर के लिए

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है, ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जी हाँ, केवल 45 मिनट के रोजाना योग से दिमाग रहता है चुस्त, मन दुरुस्त और शरीर तंदुरुस्त, वो भी बिना किसी खर्चे के। भारत के इस विज्ञान को अब दुनिया भर के लाखों लोगों ने माना है। आप भी योग अपनाइए और अपने परिवार को भी कराइए।
1: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
3: Hi Priya, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
6: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: So, where are you? The world is here at Sharda University.
7: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का और जिन विषयों पर समय दर समय हम बात कर रहे हैं वो विषय हैं जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा अधिकार, दहेज प्रथा या हत्या, कैसे बचे मनचलों से, कच्ची उम्र की शिक्षा, माँ मुझे बाहर जाना है, पितृसत्ता, असमान व्यवहार, असमान दीक्षा, खतना धर्म नहीं दर्द, बालिका या वधु और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है और ये भी सच है कि दूसरे स्टेशन हमारे खास प्रोग्राम को अपने यहां से ऑन एयर करते हैं। इसी समझौते के तहत हम दूसरे स्टेशन के कार्यक्रम आज यहां से ऑन एयर कर रहे हैं जिसमें हमें सहयोग

0: सभी श्रोतागणों को नमस्कार। हिंसा ये शब्द सुनकर आप सबके दिमाग में थप्पड़, गालियाँ, मारपीट ही आता होगा, पर कई बार हिंसा अपना ऐसा बहुरूपिया रूप धारण करती है कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि इस घटना में भी हिंसा हो सकती है। जरूरी नहीं कि हिंसा शारीरिक ही हो, हिंसा के कई प्रकार हो सकते हैं। कई बार औरतें उस हिंसा को भी उसे अपने जीवन का हिस्सा समझ के नजरअंदाज कर देती हैं। कुछ ऐसी ही सामाजिक कुरीतियों के बारे में हम आप सबके साथ एक नाटक साझा कर रहे हैं। इसका शीर्षक है हिंसा के प्रकार। ये कहानी है आलिया की। आलिया बीकॉम की छात्रा है। वो पढ़ने में बहुत होशियार होने के साथ साथ बहुत ही सरल स्वभाव की भी है। आलिया रंग में थोड़ी सांवली होने के साथ साथ कद में छोटी और थोड़ी मोटी भी है। आलिया के घर में उसकी माँ शबीना, पिता जुबैद, बहन सबीहा और एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम रहमान है। आलिया की बहन सबीहा की शादी पास के ही एक परिवार में तय है। आलिया अपने घर में सबसे छोटी है। उसे अपने घर में ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं है, खासकर अपने पिता जुबैद और भाई रहमान से। एक रात
1: अम्मी, सबीहा आपकी की शादी नजदीक आ रही है ना?
2: हाँ, नजदीक तो आ गई है, पर तैयारियाँ नहीं हुई अभी तक।
1: तो करते हैं ना?
2: बड़ा करते हैं ना। एक काम दिया था उसका सूट सिलवाने को, वो तो हुआ नहीं, तैयारियाँ करेंगी ये।
1: जी अम्मी, दे दिया है, मास्टर साहब ने कहा है अगले इतवार को आके ले जाना।
2: चलो अच्छा है, वो सूट सिल तो जाए। अच्छा, तुमने कुछ अपने लिए कपड़े लिए?
1: हाँ अम्मी, वो जो आपको काला वाला सूट दिखाया था ना, वो मैं सोच रही हूँ अप्पी के बारात के लिए सिलवा लूँ।
0: इतने में आलिया का भाई रहमान आता है।
3: हाँ हाँ, काला वाला सूट जरूर पहनना तुम, ताकि रात के अंधेरे में किसी को दिखो ही ना।
1: क्या भाईजान, आप भी?
3: अरे तो इसमें झूठ क्या है, एक तो काली हो, ऊपर से काला सूट भी पहन लो ताकि पूरी कोयला लगो, और हम लोग किसी से ये भी ना कह सकें कि ये हमारे घर की है।
1: मैं तो वही ले आई थी शादी में पहनने के लिए।
3: चुपचाप किसी और रंग का कपड़ा पहनना, हमें समाज में बेइज्जती नहीं करानी।
1: जी भाईजान।
0: तभी आलिया के पिता जुबैद आते हैं।
4: अरे क्या बात हो रही है?
2: कुछ नहीं, ये रहमान है ना, आलिया को डांट रहा कि काले कपड़े ना पहने और काली लगेगी।
4: ठीक तो कह रहा है रहमान, इसके काले रंग की मुझे भी बहुत चिंता है।
2: चिंता कैसी?
4: अरे इसकी शादी कैसे होगी, एक तो काली है, ऊपर से मोटी भी है, छोटी भी है, कौन लड़का इसको पसंद करेगा, बहुत दिक्कतें आने वाली हैं इसकी शादी में।
2: हाँ ये तो सही कह रहे हैं आप, अपनी सबिया की शादी आराम से तय हो गई है।
4: अरे तो अपनी सबिया लंबी है और रंग भी तो उसका गोरा है।
2: हाँ इसीलिए तो उसके ससुराल वालों ने उसे पसंद कर लिया, और इतने बड़े घर में शादी हो रही है।
4: हाँ ये तो है, सबिया के ससुराल वाले बहुत प्रतिष्ठित और रईस हैं।
2: सही कह रहे हैं आप, अब ऐसा ही घर हमारी आलिया को भी मिल जाए तो अच्छा हो जाए।
4: मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि आलिया को ढंग का घर मिल पाएगा, इसका काला रंग देख के ही सब भाग जाएंगे।
0: आलिया ये सब चुपचाप सुनती रहती है और खाना खा के सोने चली जाती है। आलिया अपने बिस्तर पे करवटे लेते हुए उस पूरे वाक्यांश को याद करती है और रोती है। अगली सुबह कॉलेज में।
3: ओ छोटा पैकेट, इधर आ।
1: बोलो क्या है?
3: अरे वो आसिफ कह रहा था कि आज मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, तो सोचा काला टीका लगा लेता हूँ, कहीं नजर न लग जाए।

0: यहाँ कॉलेज में मैं कहाँ काजल खोजने जाऊंगा, इसीलिए तुमको बुला लिया ताकि थोड़ी कालिक तुमसे लेके खुद में लगा लूं।
1: पागल हो तुम भी।
0: मैं तो पागल हूँ पर तुम तो भैंस हो भैंस, काली सी मोटी सी।
2: आलिया वहाँ से चुपचाप उठकर अपनी क्लास में चली जाती है। वहाँ वो अपने दोस्त अयान से मिलती है।
3: अरे वाह आलिया, आज तो तुम बिल्कुल टाइम पर आई हो।
1: हाँ आज भाईजान कॉलेज लेके आए हैं ना, इसलिए मैं जल्दी आ गई। वो बाइक से लाके छोड़ दिए तो आज बस का इंतजार नहीं करना पड़ा, नहीं तो बस की वजह से रोज ही लेट हो जाता है।
3: तुम बस स्टॉप तक आया करो, उसके बाद तो मैं भी कॉलेज जाता हूँ और मैं बाइक से जाता हूँ, तो मैं तुम्हें साथ लेकर चलूंगा कॉलेज।
1: अरे नहीं नहीं पागल हो क्या, अब्बू या भाईजान ने मुझे किसी लड़के के साथ देख लिया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा।
2: इतने में आलिया का भाई रहमान आलिया को टिफिन देने आता है जो वो घर पर भूल आई थी। रहमान आलिया और अयान को इस तरह से बातें करते देख आग बबूला हो जाता है। और फिर
4: आलिया ये क्या कर रही हो तुम, और ये लड़का कौन है?
1: भाईजान आप यहाँ कैसे?
4: मैं कैसे, या मैं ये क्यों ना पूछूं कि तुम कैसे और ये लड़का कौन है?
1: भाईजान आपको गलत फहमी हुई है, आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है।
4: क्लास में लड़के पढ़ते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम सबसे बात करती चलो। और क्या कह रहा था ये, बाइक से लेके आएगा तुम्हें?
3: भाईजान मैं कह रहा था कि।
2: इतना सुनते ही रहमान अयान को एक चांटा खींच कर मार देता है और कहता है,
4: तू चुप कर, हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से बात करने की?
3: भाईजान आप गलत समझ रहे हैं।
4: मैं सब समझ रहा हूँ, और तुम आलिया तुम तो घर चलो, मैं तुम्हें वहीं बताता हूँ।
1: भाईजान आपको गलत फहमी हुई है,
4: तुम अपना मुंह बंद करो और एक शब्द नहीं सुनना चाहता हूँ मैं तुम्हारे मुंह से, समझी? चलो मेरे साथ।
2: रहमान आलिया का हाथ पकड़ कर खींचता हुआ घर ले जाता है। ये सारा वाक्यांश आलिया के क्लास में बैठे स्टूडेंट्स देखते रहते हैं। रहमान घर पहुंचकर अपनी माँ शबीना से कहता है,
4: अम्मी अम्मी ये लो संभालो अपनी बेटी को।
5: अरे क्या हुआ, अभी तो तुम इसका टिफिन लेके कॉलेज गए थे, तो इसको क्यों लेकर आ गए?
4: अम्मी हमसे ना पूछो, सब कुछ इससे पूछो, मेरा मूड इस वक्त बहुत खराब है।
5: अरे कुछ बताओगे तभी तो जानूंगी कि हुआ क्या।
4: ये आपकी बेटी लड़के के साथ बात कर रही थी और वो इनको बाइक पे घुमाने की बात कर रहा था।
1: नहीं अम्मी भाईजान को गलत फहमी हुई है।
4: तू तो एक शब्द मत बोलना नहीं तो मार के हाथ पैर तोड़ दूंगा।
5: आलिया तुम एकदम चुप रहो, तो एक शब्द मत बोलना, वो वैसे ही गुस्से में है, पता नहीं क्या करके आई हो तुम। रहमान बेटा तुम बताओ तुम क्या कह रहे थे?
4: अम्मी मैं जब इसके क्लास में गया था टिफिन देने के लिए तो एक लड़के से बात कर रही थी और वो लड़का इसे बाइक से घुमाने की बात कर रहा था, इसका उस लड़के के साथ जरूर कोई ना कोई चक्कर है। अभी तक तो ये सिर्फ रंग में ही काली थी, अब तो करतूतें भी इसकी काली हो गई हैं।
2: तभी आलिया के पिता जुबैद आते हैं।
6: अरे क्या बात हो रही है?
4: अब्बू यही है आलिया, इसके लक्षण ठीक नहीं है, मैं कहता हूँ इसकी पढ़ाई लिखाई बंद करवाइए।
6: अरे हुआ क्या है ये तो बताओ।
4: अरे आज मैं इसके कॉलेज गया था तो एक लड़के से बात कर रही थी और वो लड़का इसे बाइक पे घुमाने की बात कर रहा था, इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे अब्बू, मैं तो कहता हूँ इसकी पढ़ाई छुड़वाइए और घर पे बिठाइए इसे।
2: जुबैद गुस्से से एकदम लाल हो जाता है।
6: तुमको हम बच्चा समझ रहे थे और कुछ नहीं कहते थे, पढ़ने देते थे, उसका ये नतीजा है।
1: अब्बू आप जो सोच रहे हैं वैसी कोई भी बात नहीं है, आप लोग गलत सोच रहे हैं, भाईजान को गलत फहमी हुई है। अब्बू
4: अब्बू से कह दो ये मेरे सामने ना रहे, हट जाए मेरे सामने से, मेरा खून खौला जा रहा है इसको देख के, और इसका कॉलेज जाना पहले बंद करवाइए नहीं तो ये लोगों में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी हमको।
6: सही कह रहा है तू रहमान, अब से ये कॉलेज नहीं जाएगी, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब बस। रहमान लड़का देखना शुरू करो इसके लिए, अब शादी करके हटाओ इसको जल्दी से।
4: अरे इसे पसंद कौन करेगा इतनी जल्दी, है भी तो दिखने में भद्दी सी।
6: अब जो भी हो इसकी शादी देखना शुरू करो।
4: ठीक है अब्बू।

फिर सब धीरे धीरे अपने अपने कामों में लग जाते हैं। पर आलिया पहले जैसी नहीं थी, वो बहुत ही डरी सहमी सी थी। उसे खुद को लेके एक हीन भावना मन में होने लग गई थी। कुछ महीनों में आलिया के घर वालों ने उसकी शादी करा दी शादिब नाम के लड़के से। शादिब भी अक्सर ही आलिया को उसके रंग, उसके शारीरिक ढांचे को लेकर हमेशा ही टिप्पणी करता रहता। आलिया चुपचाप ये सब सुनती और सहती रहती। आलिया ने अपने मन में ये मान लिया कि मैं कुरूप हूँ, बाकी लोगों की तरह नहीं। आलिया की पढ़ाई भी छूट गई थी। आलिया एक होनहार छात्रा होकर भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाई। इस कहानी के माध्यम से हम आप सबको ये अवगत कराना चाहते हैं कि आप इस तरह की हिंसा को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दें। आलिया की तरह किसी दूसरी होनहार लड़की का भविष्य ना बर्बाद होने दें। अपने खिलाफ या अपने आसपास में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाएं और कहें हिंसा को नो।

अभी आप सुन रहे थे हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला लाउड स्पीकर 90 FM का। ये विशेष कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत आप सुन रहे हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम आप समय दर समय यहाँ से सुनते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 01204060205 पर, और इसी नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। एक बार पुनः लाउड स्पीकर 90 FM का हम धन्यवाद करते हुए आपसे मैं अब अनुमति लेना चाहता हूं। बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
1: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख के चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम खराब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है।
1: काम बहुत जरूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
0: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको यही सिर पर कपड़ा रखना है हर समय
0: जी।
1: दूसरा ये कि कम से कम जो है, मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, देखें बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम होता है 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट।
0: और
1: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को भी देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, पैरी में जो है सब ज़्यादा परेशानी आती है।
0: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
1: उसमें आराम करें,
0: उसमें आराम
1: की जगह मिल जाए। लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह का जगह है उनको वहाँ पर अपना।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
1: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
0: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बीमारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
1: हीट स्ट्रोक
0: हो जाता है,
1: बुखार आ जाता है,
0: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
1: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता है, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं, औरतें हैं बच्चों को लेकर कहीं रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं, और धूप में गर्मी में है तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
0: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
1: लूज मोशन भी है,
0: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
1: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है दूध मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड में दे सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकते उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
1: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है तो, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ORS?
1: एक जीवन रक्षक घोल है
0: जी,
1: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है, ये किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आप तो देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
0: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
1: तब भी उसको ले सकते हैं,
0: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
1: दिनचर्या तो यही है कि सुबह जल्दी उठे
0: जी,
1: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है, ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा, कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा, और शरीर भी ठीक रहेगा।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपके जो कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
0: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे?
1: गर्मी से बचें, थोड़ा सा जितना हो सकता है, जितना हो सकता है, ये नहीं कि काम बंद कर दें। बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेकर चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेकर चलें इसमें।
0: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
3: अधिक जानकारी के 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी, और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: अब सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे 1 साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। ये हमारी सपना है, इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
3: सपना?
0: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: माँ क्या कहती थी?
1: कहती क्या थी, बस काजल का टीका माथे पर लगाकर बलैया लेती थी कि उसके लाडले को किसी की नजर न लग जाए।
0: जानते हैं बाबूजी, श्याम सांवरे भी अपनी माँ से ऐसा ही पूछा करते थे।
1: क्या

0: बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया।
1: जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे?
0: इसमें झूठ क्या है? जब देखो घूमती रहती हो मुझे, तुम्हें तो जादू डाला है मुझ पे।

0: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
0: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और आप सभी श्रोताओं को अजीत का भी नमस्कार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार
2: जो हमें भेजा है राजेश कुमार विद्यार्थी जी ने और वो लिखते हैं,
1: मुस्कान वो चाबी है जो सभी के दिलों के दरवाजे खोल देती है।
2: जी
1: तो अपने चेहरे पर मुस्कान जरूर बनाए रखें।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी जी। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम।
1: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी गुर्जर।
2: गिर्रा पलारी छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार साहू, आशीष कुमार साहू।
1: गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, बिमला देवी, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक।
2: गांव दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा।
1: आप सबों का संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी
1: तो श्रोताओं अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबसे प्यारी श्रृंखला
2: ये भी जानिए। इस श्रृंखला की कड़ी में आज हम जानेंगे भाषा के मशीनी अनुवाद से जुड़ी एक रोचक घटना के बारे में।
1: श्रोताओ हम सब जानते हैं कि अब किसी भी भाषा का अनुवाद बड़ी आसानी से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कंप्यूटर, इंटरनेट और एप्स के द्वारा किया जा सकता है।
2: वैसे मशीनों द्वारा भाषा के अनुवाद का काम आज से लगभग 70 वर्ष पहले से ही हो रहा है, लेकिन तब इस काम की प्रगति उतनी अधिक नहीं हुई थी।
1: श्रोताओ हुआ ये कि रूस में जन्मे गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन उस समय के मशीनी अनुवाद के उपकरणों से निराश थे। एक बार की बात है वे कार्यालय के काम से अपनी टीम के साथ चीन गए थे।
2: जी
1: तो कार्यालय की बैठकों में तो दुभाषीय मिल जाते थे, लेकिन
2: बाजारों में, सामुदायिक जगहों पर या कहीं घूमने जाने पर उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर्गेई ब्रिन के मन में एक विचार आया, हम सारी सुविधाओं से लैस हैं, यदि हमें इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो
1: आम लोगों को भला कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा जो विदेशों में जाते हैं और वहाँ की भाषा नहीं समझते।
2: परिणाम स्वरूप उन्होंने दुनिया को गूगल ट्रांसलेट सुविधा देने का निर्णय किया और ये 2004 की शुरुआत में केवल दो भाषाओं, अंग्रेजी और रूसी भाषा के साथ शुरू हुआ।
1: श्रोताओं गूगल ट्रांसलेट को दो भाषाओं के साथ सन 2006 में पेश किया गया था और जून 2024 तक यह सुविधा दुनिया की 243 भाषाओं में उपलब्ध है।
2: जी
1: इतना ही नहीं, अब भाषाओं के अनुवाद के लिए AI पर और भी एप्स उपलब्ध हैं, जिनसे दुनिया भर में लोगों को आपस में संवाद करना बहुत आसान हो गया है।
2: श्रोताओं आशा है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सबसे पहले किन दो भाषाओं में मशीनी अनुवाद का काम शुरू हुआ? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सबसे पहले किन दो भाषाओं में मशीनी अनुवाद का काम शुरू हुआ?
1: तो आपको हमारा नंबर याद होगा लेकिन एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 8800440559 है हमारा IVRS फोन नंबर।
2: audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता, अवश्य संदेश और उत्तर भेजिएगा।
1: और अब है बारी कार्यक्रमों की। श्रोताओं उमंग प्रसारण की कड़ी में सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम बिरसा मुंडा।
2: श्रोताओं अभी हाल में ही हमने महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती मनाई। आइए सुनते हैं कैसे इस महान स्वाधीनता सेनानी ने आजादी के लिए अंग्रेजी शासन से संघर्ष किया और आजादी के आंदोलन को एक नई धार दी।
3: बिहार के दक्षिणी भाग में पहाड़ और घने जंगल हैं। इन जंगलों में कई आदिवासी जनजातियां रहती हैं। इन्हीं में से एक है मुंडा। सैकड़ों वर्षों से मुंडा जाति के लोग जंगल के सहारे जीते आ रहे हैं। जंगली कंदमूल खाकर अपना जीवन निर्वाह करते, जंगली फलों के बीज कूटकर तेल निकालते और उससे अपने घरों में दिए जलाते। मुंडा परिवार मोटा अनाज या घास के दाने उबालकर घाटों खाते थे। 5-10 रुपयों के लिए जमींदारों और साहूकारों के पास बेगार करनी पड़ती थी। लोग खेतीबाड़ी भी करते लेकिन अधिकांश लोग दूसरों के खेतों में मजदूरी करके उनके पशु चराकर अपना पेट पालते। अब से कोई 100 साल पहले इनकी दशा बहुत खराब थी। ऐसे ही समय में सन 1875 में चालकाद के एक निर्धन परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ। बृहस्पतिवार या वीरवार को जन्म लेने के कारण इस बच्चे का नाम बिरसा रखा गया।

0: यही था मुंडाओं को उनके जातीय गौरव की याद दिलाने वाला बिरसा मुंडा।
1: बिरसा, अरे ओ बिरसा, कहाँ है रे तू?
2: क्या है माँ, मैं इधर हूँ।
1: तू फिर अकेला जंगल गया था? कितनी बार तुझसे कहा है इस तरह जंगल में अकेला मत फिरा कर। अरे कहीं कोई सांप बिच्छू काट ले या बाघ भालू उठा कर ले जाएगा तो?
2: तू घबरा मत माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ये जंगल है ना, ये मेरा दोस्त है। इसके सब जानवर मेरे भाई बहन हैं। ये मुझसे बातें करते हैं।
1: लो और सुनो इस लड़के की बातें। क्यों रे, तू सारी दुनिया से निराला है क्या? आज तक तो कभी नहीं सुना कि जंगल और जंगली जानवर किसी से बातें करते हैं।
2: सुनोगी कैसे, ये किसी और से थोड़ी ही बातें करते हैं।
1: हाँ हाँ, तू तो कोई खास पुरुष है, सिंह बोंगा का अवतार है ना, जो जंगल तुझसे बातें करेगा।
2: अच्छा तो फिर ये बताओ कि जंगल में सबसे अच्छे कंदमूल और फल कहाँ है, इसका पता सबसे पहले मुझे क्यों चल जाता है?
1: मुझे क्या पता?
2: जंगल में जाते ही अच्छे अच्छे खरहे और तीतर मुझे कैसे मिल जाते हैं? पोखर में कांटा डालते ही मछलियाँ कैसे फंस जाती हैं? क्यों मेरी ही बंसी की तान सबसे मीठी होती है?
1: अच्छा अच्छा अच्छा, रहने दे, ज्यादा बातें ना बना, चल घर जा, घाटो रांध कर रखाई हूँ, खा लेना, मैं जरा पानी लेने जा रही हूँ।
2: आज फिर घाटो ही बना है, भात नहीं।
1: भात क्या हमारे नसीब में है बेटा, दोनों जून अगर नमक के साथ घाटो ही खाने को मिल जाए तो बड़े भाग समझो।
2: सब दिन ऐसा नहीं रहेगा माँ, तुम देख लेना।
1: अच्छा,
2: मैं कहता हूँ मेरी बात गांठ बांध लो। एक दिन सब मुंडा दोनों जून भर पेट भात खाएंगे। सबके घर थैला भर नमक और डिब्बा भर तेल रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। ये जंगल, ये धरती सबको पेट भर खाना देगी।
1: कैसी बड़ी बड़ी बातें करता है ये रे।
0: नन्हे बिरसा की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ कर्मी और पिता सुगाना मुंडा परेशान हो जाते। बिरसा दूसरे मुंडा बच्चों जैसा क्यों नहीं? क्यों ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि सुनकर डर लगने लगता है।

जब बिरसा 8-9 वर्ष का हुआ तो उसके माँ बाप ने उसे उसके मामा के गांव भेज दिया। वहां रहकर बिरसा ने गांव की पाठशाला में पढ़ना लिखना सीखा और फिर मिशन स्कूल से लोअर प्राइमरी की परीक्षा पास की। इसके बाद अपने गांव चालकाद आकर बिरसा ने अपने पिता से आगे पढ़ने की जिद की। सुगाना समझ नहीं पाता था कि बिरसा इतना पढ़कर करेगा क्या, लेकिन उसने बिरसा को चाईबासा के मिशन स्कूल में भर्ती करा दिया। यहां बिरसा का नया जीवन शुरू हुआ, साबुन से नहाना, साफ सुथरे रहना और पढ़ना लिखना।

0: बिरसा, ए बिरसा।
1: क्या है डेविड?
0: उधर देख, वो जो फाटक पर बूढ़ा खड़ा है ना, वो तुझे बुला रहा है।
1: मुझे?
0: हाँ।
1: पर वो है कौन? मैं तो उसे जानता तक नहीं।
0: लेकिन वो तो तुझे जानता है, कहने लगा वो बिरसा मुंडा है ना, चाल काद के सुगाना मुंडा का बेटा। मैंने कहा हाँ, तो कहने लगा उसे जरा मेरे पास भेज दो बेटा, जाना एक बार मिला।
1: मैं?
0: हाँ, क्या पता चाल काद से तेरे आबा का कोई संदेशा लाया हो।
1: अच्छा, जाता हूँ।
0: हाँ।
2: तू बिरसा है ना?
1: हाँ, मैं तो बिरसा हूँ, पर तुम कौन हो? मैंने पहचाना नहीं।
2: तू कैसे पहचानेगा भगवान? मैं धानी मुंडा हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अब भी आसपास के जंगलों में कोई दूसरा नहीं है जो मेरे जैसे तीर बना सके।
1: अच्छा?
2: 50 बरस से सरदारों की मुल्क की लड़ाई के लिए तीर बना रहा हूँ। कुचली के जहर में बुझाकर ऐसे विषैले तीर बनाता हूँ कि लगते ही प्राण ले लें।
1: ठीक है, पर ये सब मुझे क्यों बता रहे हो?
2: बताने नहीं, पूछने आया हूँ भगवान। मैंने बहुत से तीर बनाकर जंगल में छिपा रखे हैं। तुझसे पूछने आया हूँ कि उन तीरों का काम कब पड़ेगा।
1: मुझे क्या मालूम, और ये तो मुझे बार बार भगवान भगवान क्यों कह रहे हो?
2: इसलिए कि तू ही हमारा बिरसा भगवान है, हमें दिक्कुओं के अत्याचार से मुक्ति दिलाने, हमारे दुख दूर करने आया है।
1: ओफो, क्या मुसीबत है। अरे बाबा, ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं भगवान हूँ?
2: मैं सब जानता हूँ, और मेरी बहन है ना, वो तो मुझसे भी बूढ़ी है, सब कुछ जानती है वो। उसने एक दिन तुझे हाट में देखा था, देखते ही पहचान गई, मुझसे बोली भगवान आ गया है, अब हमारे कष्ट दूर होंगे। वो तेरा पीछा करती यहाँ तक आई थी, तेरे रहने की ये जगह देख गई, उसी ने मुझे सब कुछ बताया।
1: पर क्या बताया, मुझे भी तो बताओ।
2: बड़े बूढ़े कहते थे एक दिन हमारा भगवान आएगा, वही फिरंगी हाकिमों और दिक्कुओं को भगाकर हमें हमारी जमीन वापस दिलाएगा। उसी दिन की तैयारी में मैंने ढेर सारे तीर बनाकर रखे।
1: क्या?
2: जब तू हुक्म देगा तो मैं उन तीरों को गांव गांव घर घर पहुंचा दूंगा। लेकिन अब ज्यादा देर ना करना भगवान, मुंडा लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं।
1: अजीब आदमी था, क्या नाम बता रहा था? हाँ, धानी मुंडा। मुझे भगवान समझता है, बिरसा भगवान कहता है मैं मुंडाओं को उनकी जमीन वापस दिलवाऊंगा, मगर अंग्रेज हाकिम, पुलिस दारोगा, जमींदार, साहूकार, इन सबके होते भला मैं क्या कर सकता हूँ?
3: लेकिन बूढ़े धानी की बातों ने बिरसा को सोचने पर मजबूर कर दिया। बिरसा ने ईसाई धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म को भी बहुत निकट से देखा। मुंडाओं में व्याप्त अशिक्षा और अंधविश्वासों से भी उसका परिचय था। उसने जान लिया था कि मुंडाओं के खोए हुए आत्मसम्मान को लौटाने के लिए उन्हें कुरीतियों से मुक्त करके किसी दृढ़ शक्ति के प्रति अटूट विश्वास दिलाना होगा। सब कुछ सोच समझ कर बिरसा ने स्वयं को धरती का आबा यानी पिता बिरसा भगवान घोषित कर दिया।

उसने अपने अनुयायियों यानी वीर साइतों को साफ सुथरा रहने, जनेऊ पहनने, तुलसी की पूजा करने का आदेश दिया। वीर साइत गांव-गांव में जाकर बिरसा भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करने लगे।

सामान्य सफाई और सावधानी बरतकर बिरसा ने हैजा और चेचक जैसे असाध्य रोगों को फैलने से बचा लिया। तब तो उसके भगवान होने की बात दूर दूर तक फैल गई। हजारों मुंडा उसके दर्शन करने, उसके उपदेश सुनने के लिए चालकाद आने लगे।

0: बिरसा ने मुंडाओं के जातीय गौरव को ललकारना शुरू किया। उसके कहने से मुंडाओं ने लगान देना बंद कर दिया, जमींदारों के लिए मुफ्त में काम करना छोड़ दिया। उसकी इन बातों से जमींदार और अंग्रेज हाकिम तिलमिला उठे। उन्होंने बगावत भड़काने के आरोप में बिरसा को 2.5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वो ये भी सिद्ध करना चाहते थे कि बिरसा भगवान नहीं, एक सामान्य व्यक्ति है। लेकिन मुंडाओं पर इसका दूसरा ही असर हुआ। वीर साइतों ने उस आंदोलन को जीवित रखा। कठिन अकाल के दिनों में भूखे रहकर भी उन्होंने न तो लगान दिया न बेगार की। सजा पूरी होने पर जब बिरसा घर लौटा तो झुंड के झुंड मुंडा चालकाद में जमा होने लगे।
1: तुम कहाँ चले गए थे भगवान? देखो तुम्हारे बिना हमारी कैसी दशा हुई। तुम्हारे कहने से हमने लगान देना बंद किया, बेगार नहीं की, तो जमींदार साहूकारों ने हमें अनाज देना बंद कर दिया।
2: लेकिन हम तुम्हारी दी हुई सीख पर अटल रहे भगवान। हमने घाटों, कंदमूल और जंगली जानवरों पर गुजारा किया, पर दिकुओं के आगे सर नहीं झुकाया भगवान।
1: अब तो जंगलों के कंदमूल भी खत्म हो चले हैं, अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे?
3: शांत हो जाओ, शांत। मैं आ गया हूं, मैं तुम्हारा बिरसा भगवान। मैं धरती का आबा हूं, यह धरती हमारी है। बिकू हमारी धरती पर कब्जा किए बैठे हैं। अंग्रेज हाकिम तो हमें आदमी तक नहीं समझते। हमें अपनी धरती उनसे वापस लेनी है। तुम सब तैयार हो जाओ, अब लड़ाई होगी, उल गुलान होगा।
4: उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान।
0: मुंडाओं की उल गुलान यानी क्रांति की पुकार से सिंहभूम, चाईबासा और रांची के जंगल गूंज उठे। तीर, धनुष, बर्छे, बलुआ जमा किए जाने लगे। घने जंगलों की गुफाओं में ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मचान बांधकर छिपकर रहने की व्यवस्था कर ली गई। बिरसा बस्ती बस्ती घूमकर छोटे बड़े स्त्री पुरुष को इस लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था।
3: मुंडा होना कोई शर्म की बात नहीं, गर्व की बात है। हम अपनी धरती के लिए बाहरी लोगों को लगान नहीं देंगे। हम इस धरती के स्वामी हैं, हम इस धरती पर अपना राज बनाएंगे। स्वतंत्र मुंडा राज। उल गुलान, उल गुलान,
0: उल गुलान। सन 1899 का दिसंबर महीना, क्रिसमस की रात, बिरसा ने पूर्ण क्रांति उल गुलान की घोषणा कर दी। बाहरी लोग चुन चुन कर मारे जाने लगे। न जाने कहां से मुंडाओं की टोली आती, जहर बुझे तीरों से अत्याचारियों को मारती, आग लगाती और गायब हो जाती।

0: So children, you have just heard this song. What did we learn? Tell me.
1: Little things together make big things.
0: Little things together make
2: big things.
0: Yes. So, if all of you little children live together with love and kindness, you will spread happiness all around.
3: Little Drops of Water. अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं समाप्त होता है। तो अजीत
4: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें।

0: और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए। तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्ते क्लास, टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हमारा भविष्य हाथों में है,
2: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
1: हाथ होंगे साफ सुमन के पालन के साथ। एस मतलब सीधा, बहते हुए साफ पानी से हाथों को गीला करें और साबुन लगाएं। पानी से दूर अपनी हथेलियों को रखें।
2: यू मतलब उल्टा, हाथ के बाहर वाले हिस्से पर अच्छे से साबुन लगाएं।
1: एम मतलब मुट्ठी, अपनी उंगलियों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
2: ए मतलब अंगूठा, अंगूठों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें।
1: एन मतलब नाखून, अपनी हथेली और नाखूनों को रगड़ें।
2: के मतलब कलाई, हाथ के पीछे के हिस्से को रगड़ें।
1: और अंत में बहते हुए साफ पानी से हाथों को धोएं और हवा में हाथों को सुखाएं।
2: तू सुमन के पालन के साथ हाथ हो गए पूरे साफ।
1: एस मतलब सीधा,
2: यू मतलब उल्टा,
1: एम मतलब मुट्ठी,
2: ए मतलब अंगूठा,
1: एन मतलब नाखून,
2: के मतलब
1: कलाई।
2: हमारा भविष्य हाथों में है,
1: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से
1: सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा
2: जनहित में जारी।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो शारदा 90.8 FM। हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना कर जब आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मंजिल आपके बेहद करीब होती हुई नजर आती है। लेकिन कभी कभी विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन डरने का नहीं, घबराने का नहीं। राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, यानी कि मोटिवेशन वाली बातों के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे होते हैं, राबता के माध्यम से राबता करते हैं। और इस राबता में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ते हैं हर बार। पिछला एपिसोड बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, हमने कम्युनिटी कनेक्ट के बारे में बातें की। इस चर्चा को अब हम आगे लेकर जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें एक गेस्ट की जरूरत होती है। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, आप डायरेक्टर हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम। तो मैम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत नमस्कार, और एक बार फिर हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका और आपकी पूरी टीम का, सुनो शारदा का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी श्रोताओं को एक स्नेहपूर्ण नमस्कार।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये रेडियो आप ही का है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम दिल से अदा करते हैं, क्योंकि इस सीरीज को आप आगे लेकर जा रही हैं। आप

0: का विभाग आपका डिपार्टमेंट आगे लेकर जा रहा है और इसी की वजह से सारा विश्वविद्यालय एक सूत में आपने पिरोया है। तो दिल से एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा जिस तरीके से मैंने शुरुआत की टेक लिया कि जिंदगी के रास्ते सरल सुगम आसान हो जाते हैं जब आप टेंशन नहीं लेते। कहा जाता है कि हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, लेकिन कभी कभी जिंदगी में टेंशन आ ही जाती है। आज आपने जिस विषय को चुना है, जिस टारगेट ऑडियंस को चुना है, वो है यूथ, हमारा युवा। कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, भारत युवा देश है। तो आपने सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये टारगेट ऑडियंस को क्यों चुना और जो सब्जेक्ट है भावनात्मक स्वच्छता, इसका हिंदी रूपांतरण मैंने किया है, अंग्रेजी है इमोशनल हाइजीन। तो ये दो बातें प्लीज आप बताएं।
1: तो जैसे आपने कहा कि भारत देश जो है वो एक यंग देश माना जा रहा है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ आर पॉपुलेशन, जो हमारी जनसंख्या है, वो यंग पॉपुलेशन है, 18-35 के एज ग्रुप में है। एंड ये हमें यंगेस्ट कंट्री का खिताब जो मिलता है इस संख्या के द्वारा। तो और देखने को ये भी आ रहा है कि जिस तरह की जनरेशन से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की पीढ़ी से हम बात कर रहे हैं, उस पीढ़ी का जो एक अभी हाल में भी, और अगर हम आंकड़ों से जाएं, मैं आपको यहाँ पे कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगी कि अगर हम 2024 की बात करें, भारत देश में 171,000 सुसाइड हुई
0: जी।
1: और इसका मूल कारण जो है वो हम मानते हैं तनाव, टेंशन। आपने सुना होगा और आप शायद मेरी बात से मुखातिब भी होंगे कि अगर हम छोटे बच्चों से पूछते हैं, आई एम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर,
0: जी
1: बहुत स्ट्रेस में हूँ, राइट। तो ये बातें अगर मैं और आप रिलेट करें, जिस जनरेशन, जिस पीढ़ी से हम आते हैं, वहाँ ये बड़ों से जुड़ी हुई बातें होती थी। बच्चों का काम था, जैसे आपने शुरू में कहा, कि हंसना खेलना और हंसते खेलते जीवन व्यतीत करना। तो इस चीज़ को लेते हुए एक बहुत बड़ी एक समस्या बनता जा रहा है, तनाव, टेंशन, राइट। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब अगर प्रॉब्लम हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी है तो इसका जो एक हल है, एक समाधान, वो भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा।
0: बेशक बेशक, समस्या है तो समाधान है। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने सफर की बात की, सुहाने सफर में गीत भी होता है, संगीत भी होता है, दूसरा हमारा ये भाग है। अगर आप कहें तो छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इस सिलसिले को आगे रखेंगे। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। प्रोग्राम का नाम है राब्ता और ये राब्ता कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम, जो कि आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से। बस एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है शारदा विश्वविद्यालय का, तो इस वजह से हम समुदाय की बातें करते हैं, आपकी बातें, ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, खुश रहने वाली बातें करते हैं। जिस विषय को आज हमारे गेस्ट ने चुना है वाकई बहुत ही खास विषय है। एक टारगेट ऑडियंस है यूथ, युवा, और हम बात करेंगे दबाव के बारे में, यानी कि तनाव के बारे में। वो जो तनाव यूथ ले लेता है, कहता है कि मैं दबाव में हूँ, प्रेशर में हूँ, और यही वजह है कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका एक सब्जेक्ट है इमोशनल हाइजीन। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा, आप हैं हमारी डायरेक्टर शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, आप हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना। मैम एक बार फिर से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है आज आपने चुना है, मैं समझ गया कि आपने यूथ को ध्यान में रखते हुए चुना है, और आपने मुझे आंकड़े भी गिनाए कि इतने ज्यादा आंकड़े हैं जिसकी वजह से वो एक डॉक्टर बन सकता था हमारा युवा, हमारा युवा एक इंजीनियर बनकर देश में योगदान दे सकता था, और इस तरीके से आकस्मिक मृत्यु जो हुई है 1.5 लाख समथिंग कुछ आपने आंकड़ा हमें दिया। तो आपका जो सब्जेक्ट है इमोशनल हाइजीन, थोड़ा सा अगर आप हमें विस्तार में बताएं ये क्या है, ये सब्जेक्ट क्या कहता है।
1: जी तो गगन आपका काम है सवाल पूछना,
0: जी,
1: तो
0: जी, जी,
1: आप थोड़ा रोल रिवर्सल करते हैं, तो इस बार मैं आपसे सवाल पूछती हूँ और उस सवाल के उत्तर द्वारा हम अपने श्रोताओं से कनेक्ट करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ गगन सबसे पहले उठकर हम क्या करते हैं,
0: सबसे पहले मैं जो मैंने बात आती नैतिक शिक्षा की, जो हमने अपने घर से सीखा है, समाज से सीखा है, मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद उसका करता हूँ कि तूने मुझे आज का दिन दिखाया परवरदिगार।
1: बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद?
0: उसके बाद मैं बहुत डिटेल में आप जान रहे हैं और अच्छी बात है, मैं फिर वही डिटेल में बताना चाहूँगा। अगर मैं बिस्तर पर, जिसे आम भाषा में कहा जाए हमारा बेड है या खटिया है, कहा जाता है कि बेटा जब उठते हैं तो आप धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, और उसके बाद मेरी नित्य रोज की जो प्रतिक्रियाएँ होती हैं, तो मैम इस तरीके से भगवान का धन्यवाद करते हुए मैं अपना घर से कदम निकालता हूँ। तो ये छोटी सी एक शुरुआत रहती है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और आपने जो बातें कही उस पर हम आगे और बात करेंगे, पर मैं आपके उत्तर में से एक जो कीवर्ड है वो उठाना चाहूँगी। आपने कहा कि मैं अपनी नित्य प्रतिक्रिया करता हूँ, और वो सभी के आई थिंक डेली रूटीन में शामिल है कि सुबह उठकर हम लोग अपने ब्रश आर टीथ, वी टेक अ शावर, राइट, और वी कॉम्ब आवर हेयर। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर फिजिकल हाइजीन,
0: राइट।
1: तो ये हमारी, जैसे आपने कहा कि नैतिक शिक्षा, कि भाई आपको अपनी सारी फिजिकल इम्प्योरिटीज की सफाई करनी है, ठीक है। लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल होता है
0: जी,
1: कि हम अपनी मानसिक स्वच्छता के लिए क्या करते हैं। जैसे आपने तो बहुत अच्छी बात कही कि भाई मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, मैं धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, और एक बहुत ही अच्छे थॉट, एक विचार के साथ मैं आगे अपना जीवन शुरू करता हूँ कि आज किसी के लिए भी कोई बुरा काम ना हो, काम ना होगा क्योंकि आपकी सोच ऐसी है, तो वो आपकी सोच में रिफ्लेक्ट करता है और वो आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हम में से कितने लोग जो हैं वो इस तरह की मानसिक स्वच्छता की ओर ध्यान देते हैं। तो जो ये हमारा टॉपिक है इमोशनल हाइजीन, ये उसी को लेकर है। हम अपनी जिंदगी को जीने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम एक पॉज लेना,
0: क्या बात है,
1: और एक ठहराव लाना, वो कहीं हम भूल चुके हैं।
0: भूल चुके हैं,
1: और हम भूल चुके हैं, तो उसी तरह से शायद हमने अपनी नई पीढ़ी को तैयार करा है, हमने अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कंडीशन करा है कि आप भागते रहिए, आप अपने जीवन में आगे कुछ ना कुछ बढ़ते रहिए, और एक ठहराव बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो वो कैसे हम ला सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये एक मुहिम के तौर पे मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि जो भी हमारे श्रोता है वो इसको अपनी आदत में लेकर आए, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल हाइजीन, टू गेट क्लियर ऑफ All your impurities which are there in your mind.
0: क्या बात?
1: आपके जितने भी मानसिक विचार जो हैं उनकी सफाई या उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना, क्योंकि आज अगेन जो हमारा टॉपिक जहाँ से हमने शुरू करा था वो है हमारे युवाओं को लेकर, और वो इतना एनग्रॉस्ड हैं। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि बच्चे अगर एक डिवाइस छोड़ते हैं, मोबाइल छोड़ते हैं, तो आईपैड छोड़ते हैं, तो लैपटॉप छोड़ते हैं, तो मे बी टीवी, तो वो इतना एनग्रॉस है कि कहीं पे एक पॉज लेना भूल गए हैं. तो एक इस रेडियो के प्रोग्राम के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, एक हम आई वुड से कि आई वुड ट्राई टू रीटेरिएट जो आपने कहा कि नैतिक शिक्षा हमें मिली है वो सभी के पास है, पर वो कहीं ना कहीं
0: अप्लाई कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते. मैम आपकी बात को मैं समझ गया और हमारे जो श्रोता हैं, जो लिसनर्स हैं, वाकई बहुत समझदार हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छी एक हिंट दे दी है जिस सब्जेक्ट पर लोग कतराते हैं बात करने से. और हमारा जो युवा अगर अलर्ट हो गया, समझ गया, संभल गया, तो निश्चित तौर पर वो अपने आप को बचा कर रखेगा, अपने लिए, देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और वो अपना नुकसान नहीं चाहेगा. सो लिसनर्स, कहने का आशय यही कि वाकई एक अच्छा चर्चा का विषय. इस विषय को आप जानिए, सुनिए, समझिए, और एक एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है. सो कहीं जाएगा मत. लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हमें भी ठहराव की बहुत ज़रूरत है, एक ब्रेक की ज़रूरत है. जब बातों का सिलसिला लगातार ज़्यादा हो जाता है तो हमें भी म्यूज़िक की आवश्यकता होती है. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ. प्रोग्राम है राबता.

0: जनाब म्यूजिक एक ऐसा जरिया है कि दिलों को जोड़ने का काम करता है, स्ट्रेस यानी कि तनाव को दूर करने का काम करता है, और यही एक वजह है कि गीत संगीत में जब आप खो जाते हैं तो कभी कभी आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं या अपना मन पसंदीदा गाना आप सुन लेते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं गगन आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है राब्ता और राब्ता कर रहे हैं हम, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम जो कि डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छी तरीके से विषय पर आपने रोशनी डाली। विषय का नाम है इमोशनल हाइजीन यानी कि भावनात्मक स्वच्छता। स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो मानसिक विचार हो चाहे वो आपकी हेल्थ की बात क्यों ना हो। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब मैं सुबह उठता हूं तो ध्यान भी करता हूं, ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। और आज के परिवेश में हम देखें कि मैम ज्ञान का अथाह भंडार सोशल मीडिया के माध्यम से बह रहा होता है, किताबें भी हमने पढ़ी हैं या अच्छी अच्छी बातें हो भी रही होती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहा है जिसकी वजह से वो अपने कर्मों का, कहते हैं ना आम भाषा में, खुद भागीदार है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि आप भला कीजिए, आप सकारात्मक रहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने एक समाज में चेतना ला दी है, युवा वर्ग भी बड़े बुजुर्ग भी, हर धर्म विशेष के लोग उनसे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो चीजें तो वही है लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है और क्या कह रहा है और किस तरीके से सामने वाला उसको अप्लाई कर रहा है। तो मैम मैं वाकई दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट आप लेकर आए, क्योंकि समाज में मैंने ये देखा है कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं घटी हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि उस पर हम रोशनी डालें, और वाकई आपने सब्जेक्ट को चुना, मैं पुनः बारंबार आपको शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैम थोड़ा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो चीज़ें हैं हमारे अंदर कैसे आती हैं, कैसे हम उनको आगे लेकर जाएं, कैसे अपने आप को तनाव से बचा कर रखें, वो चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो या आम जिंदगी में यूथ अगर कनेक्ट करता है तो वो कहता है कि मेरा प्रेमी या प्रेम का रूट ही है, वो एक दूसरा टेंशन भी वो लोग ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, लेकिन जैसे आप जो टिप्पणियाँ आपने करी के ये कहीं ना कहीं इस बात का जो समाधान है, जो समस्या की हम बात कर रहे हैं, हम सभी उस चीज से अवगत है, वी आर अवेयर ऑफ दैट। जैसे आपने कहा कि आप मेडिटेशन करते हैं या आप ध्यान करते हैं, या इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है हमारे जो आजकल की जनरेशन है उनके पास इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन बस कमी कहाँ एप्लीकेशन की है। तो आज आगे जो हम बातें करेंगे वो दो चार चीज़ें जो हम दोहराएंगे जो हमारे जीवन में ऑलरेडी हैं पर उनको हम कैसे इम्बाइब कर सकते हैं और इमोशनल हाइजीन को कैसे अपना सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है,
0: please,
1: अगर आपको कभी जैसे कट लग जाता है या थोड़ा सा जल जाता है
0: जी,
1: तो हमारा क्या रिएक्शन रहता है?
0: उस वक्त रिएक्शन यही रहता है कि ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये लापरवाही क्यों हो गई। और कहते हैं कि हर एक घटना दुर्घटना सीख देती है कि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो
1: जी।
0: क्योंकि अंग भंग हो जाना बड़ा नुकसान होता है, समय बर्बाद होता है, रुपया आपका बर्बाद होता है और एक तनाव जो भी कहीं ना कहीं दिमाग में फिर रह ही जाता है
1: जी। तो इसको अगर हम मान के चले फिजिकल हर्ट कि भाई मैं सब्जी काट रही हूँ, मैं एक गृहिणी भी हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ और अचानक से मेरा हाथ कट गया
0: जी,
1: तो मेरा जो तुरंत रिएक्शन रहता है कि भाई हाथ कट गया, खून निकल रहा है, तो या तो मैं उसको पानी में हाथ डाल के खून को रोकना चाहूंगी, एंटीसेप्टिक से हाथ धोऊंगी या मैं बैंडेड लगाऊंगी,
0: डिटॉल से या आम भाषा में फिटकरी है तो कोई फिटकरी लगाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह के उपचार मेरे पास उपलब्ध है और अगर कहा जो है वो गहरा है तो शायद हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे कि भाई ये फिजिकल हर्ट है और हमें घाव लगा है, अब आप हमारा उपचार करिए। लेकिन क्या होता है जब एक इमोशनल हर्ट के हम शिकार होते हैं, क्या हम उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं? स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इन सब बातों के लिए बात करना भी एक टैबू है।
0: क्या बात है?
1: तो ये एक टैबू है कि आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई अपनी सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर कर और आप तक पहुंचना भी चाहता है तो वहाँ से शायद उनको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता। और इमोशनल हर्ट इज मोर ग्रेवर देन द फिजिकल हर्ट। वो ज़्यादा गहरा घाव है इमोशनल हर्ट। बहुत तरह की बातें होती है, आजकल के जो बच्चे हैं वो एक एक या दो दो बच्चे ही हैं, बहुत लाड़ प्यार से पले हैं, तो अगर टीचर ने कुछ कह दिया या आपस में कुछ बात हो गई, जैसे आप बोल रहे थे पार्टनर से कुछ बात हो गई, अनबन हो गई है, तो क्या वो एक इमोशनल घाव को लेकर हम क्या करते हैं? ये सवाल मैंने, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम शारदा में पढ़ाते हैं, और मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी प्रोपोगेटर मैं कह सकती हूँ, तो मैं अपने क्लास में भी अपने बच्चे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स उनसे पूछती हूँ कि क्या करते हो जब आपको इस तरह का मानसिक घाव लगता है, तो उनका जवाब होता है कि मैम हम अगर हमें दुख होता है तो हम और दुख भरे गाने सुनते हैं, या अलग अलग मीन्स है नो क्या ही फाइंड सोलाइस इन फूड गुड फूड है, तो अपने अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। पर फिर मेरा सवाल उनसे यही रहता है कि क्या आप उसको, जिस तरह से आप एक फिजिकल हर्ट को, एक शारीरिक घाव को सहेज के रखते हो,

0: बचा कर रखते हो, उसे प्रोटेक्ट करके रखते हो, क्या वही एफर्ट आप एक मेंटल हर्ट के लिए, एक मेंटल घाव के लिए, एक मानसिक घाव के लिए उतना एफर्ट आप दे पाते हैं?
1: बहुत बड़ी बात कर रहे हैं हम, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, यूथ को संभलने का आप मौका दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई दिक्कत परेशानी होती है तो घुटे ना, आम भाषा में जिसे कहा जाता है, कहा जाता है कि मन का बोझ हल्का हो जाता है जब आप अपने मन की बातें शेयर करते हैं। और सेहत सही तो लाभ कही दोस्तों, मैं तो ये भी कहूँगा कि उस दोस्त से आप जरूर बातें साझा करिएगा जो दोस्त आपकी बात का मजाक ना उड़ाए, भरे समाज में आपकी बातों को इधर से उधर ना करे, ऐसे दोस्त होना भी बहुत बड़ी बात है। और जिस परिवेश की हम बात कर रहे हैं, जिस माहौल की बात कर रहे हैं, आप और हम शारदा विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ आपके टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आपके मेंटोर हैं, तो आप उनसे जरूर बात करिएगा क्योंकि बातों से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। चलिए मैम, यहाँ पर इस सिलसिले को आगे ले जरूर लेकर जाएंगे, तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। सो लिसनर्स, कहीं दूर मत जाएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम, जिसके जरिए हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने यूथ को, और प्रोग्राम का नाम है राब्ता और विषय है इमोशनल हाइजीन। सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे, एक एरोप्लेन में कायलपट्टन के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुर। बाबू हाँ बोल दे तेलुगु।

0: बड़ी दुआओं से, ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से आपको, यानी कि आपके माँ बाप ने आपको मांगा है। कहते हैं कि जिस आंगन में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। कभी कभी माँ भी नाराज हो जाती है, पिताजी भी नाराज हो जाते हैं, वो एक अलग बात होती है। सोचिए जिस घर आंगन में बच्चे ना खेलें, ना किलकारी गूंजे, तो बहुत सुना सुना वो आंगन लगता है। राम राम दोस्त, राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और एक विशेष कार्यक्रम सुन रहे हैं आप राब्ता। और इस राब्ता कार्यक्रम के जरिए हम राब्ता कर रहे हैं एक विषय से जिसका नाम है इमोशनल हाइजीन। और इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम, जो कि आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, जो एक रूपरेखा बनाने का मैंने प्रयास किया, उसका मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही कि आप दुआओं से मांगे हुए हैं। बड़ी मिन्नतों से आपने जन्म लिया है और जन्म लिया है तो कहते हैं कि ये खुदा की, ईश्वर की नेमत है, इसको आप नुकसान ना पहुंचाएं। कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से मानव जन्म मिलता है। जब आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके माता पिता भी सिवाय आंसू के आप उनको कुछ देकर नहीं जा रहे होते। अगर आपने उस दुख दर्द को झेला है, जाना है, समझा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको उनकी दामन में, उनकी झोली में खुशियों से उस दामन को हम भर दें। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट आप लेकर आई हैं।
1: आपका भी शुक्रिया और आपके श्रोताओं का भी शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वो इतने पेशेंटली हमारी बात को सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि अगर हमारे श्रोताओं के किसी एक या दो के जीवन में भी कोई हम एक विचार में कुछ, जैसे आपने कहा, पॉजिटिविटी लेकर आ पाए, तो आई थिंक वो उद्देश्य इस प्रोग्राम को करने का सफल
0: बहुत खूबसूरत। कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी, बीइंग अ मीडिया पर्सनालिटी, बीइंग अ रेडियो प्रेजेंटर होने के नाते मुझे अच्छा लग रहा है कि वाकई मैं बारंबार मैं इमोशनल हो रहा हूँ कि एक अच्छे सब्जेक्ट को आपने चुना। और जिस परिवेश में हम और आप रह रहे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मेरे पास कुछ फ्रेशर्स आए थे, मैंने रेडियो की भाषा में समझाने की कोशिश की। मैंने कहा देखो ऐसा है भाई, एक कहावत है कि चिकने घड़े बनना, हर गम को यूं करके आप भुला दीजिए, क्या आपको नहीं मिलेगा। मार्क्स अगर कम रह गए तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। आप चाय के साथ चर्चा करिए, फिल्म देखने चले जाइए, टूर पे चले जाइए। अगर आपको और भी गम है, जो हम बात कर रहे थे प्रेमी प्रेमिका की, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को हार्म पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं। तो मैंने अपने रेडियो भाषा में उनको समझाने का छोटा सा प्रयास किया,
1: क्योंकि जैसे आप बार बार दोहरा रहे हैं कि इस तरह के इको सिस्टम से जुड़े होने के हम लोग अब एक फर्ज बनता है कि एक तरह की जागरूकता हम लेकर आए। तो यहाँ मैं दो इम्पॉर्टेंट बातें कहना चाहूँगी जो हम बात करें इमोशनल हाइजीन की, कि एक तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने इकोसिस्टम में, ये सभी लोगों के लिए है, ना सिर्फ लोग जो इस तरह की इमोशनल हर्ट से या मेंटल प्रेशर से जो है वो जो गुजर रहे हैं, बल्कि उनके आसपास के लोगों, जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे माता पिता या टीचर या अभिभावक या आपके दोस्त, के इट्स हाई टाइम वी लर्न टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स।
0: ये मेरा सवाल था मैम, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
1: तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, तो हम सभी को एक डॉक्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। और कई बार आप इस सिचुएशन में होते हैं, आप अपने उस सिचुएशन में होते हुए आप बहुत चीज़ को डायग्नोस नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से, एक जो इस सिचुएशन के बाहर खड़ा हुआ है और उस नज़रिए से आप देखते हैं, तो आप उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आपके मेंटर्स हैं या आपके टीचर्स हैं या आपके पीयर ग्रुप है, तो उन लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि इस तरह के अगर हम सिम्टम्स देखें, तो जैसे आपने कहा कि दिस इज़ नॉट समथिंग टू टैबू अबाउट, ये कोई गलत बात नहीं है। जिस तरह से हमें फिजिकल हर्ट होते हैं, हमें बीमारियां होती हैं, शारीरिक बीमारियां होती हैं, और हम उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह से कोई मानसिक तनाव है या कोई मानसिक प्रेशर है, तो उसका उपचार भी उपलब्ध है। और ये चीज़ जो है वो बहुत आसानी आसानी से ठीक हो सकती है।
0: बहुत खूबसूरत मैम, वाकई बहुत एक अच्छा सवाल जो मैम की तरफ से खुद ही आया और उसका बहुत खूबसूरती के साथ मैम ने जवाब दिया। मैं भी थोड़ा होमवर्क कर रहा था, मेरे भी दिमाग में यही सवाल था कि इसका आंसर मैं आपसे जानूं। तो मैम आपने जो बात रखी लिसनर्स, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी बहुत बहुत बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और फिर कहता हूं, बारंबार कहता हूं कि ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं मैम कि टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। मेरा मानना यह कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, खुश रहने का, क्योंकि जब आप खुशनुमा माहौल बनाते हैं तो आप खुश रहते हैं, आपकी तरक्की होती है, बरकत होती है। लेकिन जब आप एक ताना बाना बुनते हैं कि मैं उसको नीचा कैसे दिखाऊं, उसको गिराने की कोशिश मैं कैसे करूं, तो मुझे लगता है कि आप वहीं उलझ कर रह जाते हैं और आपकी तरक्की बरकत रुक जाती है, थम जाती है। तरक्की बरकत आपको एक ना एक दिन मिलेगी जरूर, कछुए की चाल से धीरे धीरे धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, खुद पर और खुदा पर यकीन रखिए, तो निश्चित तौर पर कामयाबी आपको मिलेगी जरूर। हाँ जी बेटा गगन, ये तो नई लाइन आ गई। ये मेरे साथ बहादुर होते हैं और बहादुर ने इशारा कर दिया कि गगन इसको कॉपीराइट करा लीजिएगा। तो मैम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम अपनी बातों को समापन की ओर जरूर लेकर जाएंगे। सो छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: तुझसे है कैसा ये राब्ता। राब्ता बहुत ही शीर्षक, बहुत ही खूबसूरत नाम, और इसके जो जन्मदाता हैं आप हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम। आपने बहुत ही खूबसूरत नाम इस प्रोग्राम का रखा है, और आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर में, आप यहाँ कार्यरत हैं, और आप एक सब्जेक्ट को चुन कर लेकर आई हैं जिसके बारे में सुनना समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये भी कहूँगा कि सिर्फ यूथ ही इस प्रोग्राम को ना सुने, अपने पेरेंट्स को भी आप कार्यक्रम को ज़रूर सुनाइए। इमोशनल हाइजीन के बारे में बातें हो रही हैं, भावनात्मक स्वच्छता के बारे में बातें हो रही हैं। मैम ने ये भी बताया कि आपके शरीर को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो आप अलर्ट हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब आप अंदर से टूट रहे होते हैं, मानसिक तनाव होता है, तो तब हम क्या करें। आपने ये भी कहा कि लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, बातचीत के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। तो मैम फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें, कोई ऐसी बात जो आपसे छूट रही है, जो आप कहना चाहती हैं यूथ से, जैसे कि मैंने जिक्र किया पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी, तो आप कह सकते हैं।
1: जी, तो सबसे पहले मैं वो इकोसिस्टम को लेकर ही जो हम बात करते हैं कोपिंग मैकेनिज्म, कि हम किस तरह से, तनाव देखिए हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हर स्टेज पे, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, किसी ना किसी बात का तनाव हम लोगों को रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम एकेडमिशियन और एक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मैं उजागर करना चाहूँगी कि ये जो कंसेप्ट है जो हम तनाव की बात करते हैं, वो सेंस हाइले साहब ने इसको प्रोपोगेट करा था, और उन्होंने कहा था कि सम स्ट्रेस इज नेसेसरी टू लीड अ लाइफ बट इट शुड नॉट बी डिस्ट्रेस। राइट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस,
0: समझने की जरूरत है
1: जी। तो हमें स्ट्रेस में से डिस जो नेगेटिव कॉनोटेशन है उसको हटाना है। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, तो पहला जो कोशिश मैं जो मैं बात कहना चाहूँगी वो कोशिश रहेगी हमारे आसपास से जुड़े लोगों की, मैं भी एक पेरेंट हूँ और आप भी एक पेरेंट हैं, फिर मेरा वही सवाल रहता है कि जैसे बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है, तो सबसे पहले हमारा सवाल ऐसे पेरेंट, और ऐसे नहीं है ये सवाल मैंने अपने बच्चों से नहीं करा, जब मेरे बच्चे एग्ज़ाम दे कर आते हैं तो पहला सवाल मेरे उनसे होता है, हाउ वॉज योर एग्ज़ाम, आपका पेपर कैसे रहा। लेकिन जिस बच्चे ने वो एग्ज़ाम दिया शायद हम उसको भूल जाते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। राइट, तो ये चीज़ छोटी, बहुत छोटी चीज़ है, अगर एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, इफ़ वी कैन इम्बाइब दैट इन टू आर डे टू डे लाइफ, कि सिर्फ ये ना पूछ के हाउ आर यू, अगर हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेस करें, हाउ आर यू फीलिंग टूडे, तो बहुत जो है एक डिफरेंस बनेगा लाइफ में, क्योंकि वो एक फ्रेज हमें एक मौका देगा अपनी एक्सप्रेशंस को, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने का। तो यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो प्रेशर कुकर से तो वाकिफ होंगे, तो कहते हैं कि वो सीटी इसीलिए लगाई जाती है कि वो प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होता है। तो बस वही जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना है, कि जहाँ हम एक मौका दे सकें एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, एज ए मेंटोर, एज पेरेंट, एज कोलीग्स टू अदर पर्सन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट बीइंग जजमेंटल। बहुत ज़रूरी है कि हम उनको, उनकी बात को सुनें, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चा आके कुछ हमसे बात कहना चाहते हैं और एज अ पेरेंट ऑल्सो हम जजमेंटल हैं, तुमने ही कुछ गलत करा होगा या तुम्हारी ही गलती रही होगी, तो वो क्या है, हम बच्चे को धकेल रहे हैं, अपने कोलीग्स को धकेल रहे हैं कि वो आके हमसे बात ना शेयर करें। तो इमोशनल हाइजीन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बात हम ध्यान में रखें कि जब हम किसी सिचुएशन, किसी इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं तो वी हैव टू डील विद एन ओपन माइंड, हमें नहीं पता वो पर्सन किस तरह की दुविधा से, प्रेशर से गुजर रहा है।
0: बहुत खूबसूरत।
1: दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जैसे आपने नैतिक शिक्षा की बात करी, तो मैं उस नैतिक शिक्षा के सूत्र को लेकर कहना चाहूँगी। आपको याद हो अगर हमारे पुराने घरों में सुबह उठते के साथ ही श्लोकों का जो है वो उच्चारण होता
0: जी,
1: था
0: जी,
1: चाहे वो गायत्री मंत्र ही क्यों ना। तो अभी एक स्टडी हुई है लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट में, सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, जहाँ पे क्योंकि लोगों का मानना है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सिर्फ अप्लाइड साइंसेस तक एप्लीकेबल है, जहाँ हम फिजिक्स की बात करते हैं या केमिस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल साइंसेस में भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे दो ग्रुप्स को लिया गया, एक ग्रुप जिनको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आती थी और एक ग्रुप जिनको संस्कृत आती थी, और जिन लोगों को इंग्लिश और हिंदी आती थी उनको कुछ दिन तक संस्कृत के श्लोकों का जो पार्ट है वो सुनाया गया, और उनका फिर एक फंक्शनल MRI, एक एडवांस लेवल का MRI है और वो किया गया। और उस फंक्शनल MRI में आप इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं और जो भी आपका रिस्पोंडेंट होता है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम करता है। तो उसमें जो MRI ब्रेन का हुआ तो उनका रिस्पॉन्स पहले जब सिर्फ वो इंग्लिश और हिंदी जानते थे और जब उसके बाद जब उन्होंने संस्कृत श्लोक का जो पठन सुनना शुरू करा उसमें बहुत अंतर था। तो आप जिस भी मज़हब से आप बिलोंग करते हैं, आप हर किसी मज़हब में आपको वर्सेस मिल जाएंगी, कुरान की आयतें मिल जाएंगी, या अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो आपको श्लोक मिल जाएंगे। तो एक हैबिट बना सकते हैं कि हम अपने घरों में सुबह के टाइम इसका उच्चारण जो है वो करें। उसका इफ़ेक्ट, क्योंकि ये कोई एक मैजिक पोशन नहीं है कि हम पिए और वो तुरंत दिखे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ जो है वो दिखेगा। दूसरी चीज़, आप आई जस्ट टेक टू मोर मिनट्स टू वाइंड अप। जब हम जनरेशन जी की बात करते हैं तो ये आप भी मुझसे जो है बहुत हद तक सहमत होंगे, दे थ्राइव ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जैसे 2 मिनट्स नूडल, 30 सेकेंड्स ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स, सब कुछ तुरंत अभी है। तो इसके विपरीत थोड़ा हमें जाना पड़ेगा, जैसे हमने पहले पॉज की बात करी थी, और अगेन एज एन एकेडमिशियन जब मैं यहाँ कुछ कह रही हूँ तो ये जो चीज़ें हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है, ये शोध के द्वारा जो है वो स्थापित की गई है। तो एक कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो मिशेल वॉल्टर एक थ्योरिस्ट है, उन्होंने स्टैनफोर्ड में ये एक्सपेरिमेंट करा था, और उन्होंने 5 साल के बच्चों को लिया और उनको मार्शमेलो, जैसे हमारे यहाँ जलेबी होती है या बर्फी होती है, उस तरह की मिठाई है अमेरिका में, तो उन्होंने उन बच्चों को वो मिठाई उनके सामने रखी और इंस्ट्रक्शंस के साथ छोड़ा कि आप अगर ये मिठाई 15 मिनट तक नहीं खाते हैं और 15 मिनट तक वो रेजिस्ट कर पाते हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको 1 मिठाई के बदले 2 मिठाई दी जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को उस मिठाई के साथ एक बंद कमरे में छोड़ दिया जिसमें कैमरा लगा हुआ था, सॉरी। तो जब थोड़ी देर के बाद आए कुछ बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है अगर हमारे श्रोता से देखना चाहें तो। तो बच्चे मुंह बनाते हैं, कोई उसको लिक करता है, कोई चाटता है, कोई उसको खा भी लेता है, और फिर जिन बच्चों ने वो टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं कर पाए थे, ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है हमारे एकेडमिक्स में, तो उन्हीं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर 15 साल बाद फिर स्टडी की गई
0: जी।
1: जो बच्चे 5 वर्ष के थे वो अब 20 वर्ष के हो गए, और उनका जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में प्रवेश के लिए एक एग्ज़ाम होता है, उनका एग्ज़ाम सेट स्कोर के नाम से होता है, तो उनके सेट स्कोर उन बच्चों के एग्जामिन किए गए। तो जिन बच्चों ने उसको टेम्पटेशन को रेजिस्ट करा था, उस मिठाई को नहीं खाया था, उनके स्कोर काफ़ी बेहतर थे उन बच्चों के कंपेरिजन में जो मिठाई को रेजिस्ट नहीं कर पाए थे, और तुरंत दे गिव इन टू द टेम्पटेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और तुरंत वो मिठाई उनके मुंह में चली गई थी। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर परफॉर्मेंस। तो क्या इसे हम निकालते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेजिस्ट आवर टेम्पटेशंस एंड टू डीक्लटर आवर थॉट्स। संस्कृत में एक बहुत अच्छी वर्स है जो मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद दिलाती है, और हमारे स्कूल की डायरी में लिखी होती थी, तमसो मा ज्योतिर्गमय, राइट, दैट इज फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अस्तो मा सद्गम्य, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स। तो पॉजिटिविटी लाइफ में, जैसे आपने कहा, जीवन बहुत ही सुंदर है और बहुत ज़रूरी है कि हम नेगेटिविटी को हम जो है ऑल टुगेदर एलिमिनेट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में से। कोई ना कोई हमें मिलेगा जो हमारे विचारों से सहमत नहीं करेगा और जो शायद हमें ह्यूमिलेट भी करेगा, जो चाहे हमें बुरा भला भी कहे
0: जी।
1: तो बहुत ज़रूरी है कि उस नेगेटिविटी को दूर रख कर इमोशनल हाइजीन प्रैक्टिस करके, जैसे आपने कहा, कुछ 2-4 बातें जो आई थिंक हम सभी को मालूम है, ये एक माध्यम है रिटीरिएट करने का। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें कॉन्शियस लेवल पे नहीं करते, तो एक कॉन्शियसनेस लेकर आने का कि जहाँ पर हम और आप मिलकर मेडिटेशन, चाहे वो 2 मिनट, और मेडिटेशन ज़रूरी नहीं कि आप आग बंद करके बैठे, आप सिर्फ चुपचाप एक कोने में बैठे, एक इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपका पिछला दिन कैसे गुजरा और वो दिन कैसे बेहतर हो सकता था। क्या आप वॉक कर रहे हैं तो एक मेडिटेटेड वॉक, जैसे हम कहते हैं कि हर एक कदम पे हम ओम नमः शिवाय बोलेंगे या जय श्री राम बोलेंगे, तो एक मेडिटेटेड वॉक आप कर सकते हैं। और फिर म्यूजिक, जैसे आपका रेडियो स्टेशन तो है ही हमेशा, तो जब भी आपको ऐसे लगे इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है म्यूजिक का भी। अदरवाइज आप यंग जनरेशन है, आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं।
0: बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरती के साथ आपने हर एक सवाल का जवाब दिया, और जिस तरीके से लास्ट में आकर आपने चौके छक्के मारे, या कहें कि मतलब इन बातों को अगर लिसनर्स, अरे नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको मंच पर यूं कहें कि मंच संभालते हुए देखा, मैं आपसे सीख रहा हूँ। और बस लिसनर्स हम यही कहेंगे कि फिर अपने शब्दों को दोहराऊंगा कि वाकई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, अपने अंदर खुशियाँ तलाशिए, ज़माने में खुशियाँ तलाशिए, खुशियाँ बांटिए। और जिस तरीके से मैडम ने बात की कि पेरेंट्स की जो भूमिका है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमारा फ़र्ज़ बनता है एक दोस्ताना व्यवहार के साथ उसके बच्चे के दुख दर्द को हम बांटें, दुख दर्द को कम करने की कोशिश करें, वो खुशनुमा माहौल बना कर दें ताकि वो अपने मन की बात हमसे साझा कर पाए, शेयर कर पाए। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है कि जिसकी वजह से बच्चे हिम्मत नहीं कर पाते अपने अभिभावक से अपने मन की बात साझा नहीं कर पाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, दिल की गहराइयों से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम का, क्योंकि आप एक ऐसे सूत्र हैं जो हम अपने आसपास की कम्युनिटी के साथ जुड़ पाते हैं। तो एक बार फिर बहुत तहे दिल से आपको और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा रखते हैं कि हम आगे भी मिलेंगे और कुछ ऐसे
0: बेशक अच्छा करेंगे, कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर यही कहेंगे कि ना टेंशन लेने का, ना टेंशन देने का, खुश रहने का, बिंदास रहने का। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM का ये विशेष कार्यक्रम राब्ता। कैसा लगा जरूर हमसे राब्ता करिएगा 0120404020205 पर। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से। यही दुआ, यही प्रार्थना कर जब आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मंजिल आपके बेहद करीब होती हुई नजर आती है। लेकिन कभी कभी विघ्न बाधाएं आ जाती हैं, लेकिन डरने का नहीं, घबराने का नहीं। राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, यानी कि मोटिवेशन वाली बातों के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे होते हैं, राबता के माध्यम से राबता करते हैं। और इस राबता में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ते हैं हर बार। पिछला एपिसोड बहुत ही खूबसूरत रहा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, हमने कम्युनिटी कनेक्ट के बारे में बातें की। इस चर्चा को अब हम आगे लेकर जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें एक गेस्ट की जरूरत होती है। तो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, आप डायरेक्टर हैं, डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम। तो मैम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत नमस्कार, और एक बार फिर हमें यहाँ बुलाने के लिए आपका और आपकी पूरी टीम का, सुनो शारदा का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी श्रोताओं को एक स्नेहपूर्ण नमस्कार।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये रेडियो आप ही का है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम दिल से अदा करते हैं, क्योंकि इस सीरीज को आप आगे लेकर जा रही हैं, आपका विभाग, आपका डिपार्टमेंट आगे लेकर जा रहा है, और इसी की वजह से सारा विश्वविद्यालय एक सूत में आपने पिरोया है। तो दिल से एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद मैं आपका करना चाहूंगा जिस तरीके से मैंने शुरुआत की, टेक लिया कि जिंदगी के रास्ते सरल, सुगम, आसान हो जाते हैं जब आप टेंशन नहीं लेते। कहा जाता है कि हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, लेकिन कभी कभी जिंदगी में टेंशन आ ही जाती है।

0: रहा है कि जिस तरह की जनरेशन से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की पीढ़ी से हम बात कर रहे हैं, उस पीढ़ी का जो एक अभी हाल में भी, और अगर हम आंकड़ों से जाएं, मैं आपको यहाँ पे कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगी कि अगर हम 2024 की बात करें, भारत देश में 171,000 सुसाइड हुई
1: जी,
0: और इसका मूल कारण जो है वो हम मानते हैं तनाव, टेंशन। आपने सुना होगा और आप शायद मेरी बात से मुखातिब भी होंगे कि अगर हम छोटे बच्चों से भी पूछते हैं, आई एम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर,
1: यस जी,
0: मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, राइट। तो ये बातें अगर मैं और आप रिलेट करें, जिस जनरेशन, जिस पीढ़ी से हम आते हैं, वहाँ ये बड़ों से जुड़ी हुई बातें होती थी
1: जी, जी।
0: बच्चों का काम था, जैसे आपने शुरू में कहा कि हंसना, खेलना और हंसते खेलते जीवन व्यतीत करना। तो इस चीज़ को लेते हुए एक बहुत बड़ी एक समस्या बनता जा रहा है, तनाव, टेंशन, है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब अगर प्रॉब्लम हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी है, तो इसका जो एक हल है, एक समाधान, वो भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा।
1: बेशक बेशक, समस्या है तो समाधान है, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने सफर की बात की, सुहाने सफर में गीत भी होता है, संगीत भी होता है, दूसरा हमारा ये भाग है। अगर आप कहें तो छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इस सिलसिले को आगे रखेंगे। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। प्रोग्राम का नाम है राब्ता, और ये राब्ता कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम, जो कि आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से। बस एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है शारदा विश्वविद्यालय का, तो इस वजह से हम समुदाय की बातें करते हैं, आपकी बातें, ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, खुश रहने वाली बातें करते हैं। जिस विषय को आज हमारे गेस्ट ने चुना है वाकई बहुत ही खास विषय है। एक टारगेट ऑडियंस है यूथ, युवा, और हम बात करेंगे दबाव के बारे में, यानी कि तनाव के बारे में। वो जो तनाव यूथ ले लेता है, कहता है कि मैं दबाव में हूँ, प्रेशर में हूँ, और यही वजह है कि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका एक सब्जेक्ट है इमोशनल हाइजीन। तो एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा, आप हैं हमारी डायरेक्टर

0: शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से आप हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना। मैम एक बार फिर से मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: मैम। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है आज आपने चुना है, मैं समझ गया कि आपने यूथ को ध्यान में रखते हुए चुना है, और आपने मुझे आंकड़े भी गिनाए कि इतने ज़्यादा आंकड़े हैं जिसकी वजह से वो एक डॉक्टर बन सकता था हमारा युवा, हमारा युवा एक इंजीनियर बनकर देश में योगदान दे सकता था, और इस तरीके से आकस्मिक मृत्यु जो हुई है 1.5 लाख समथिंग कुछ आपने आंकड़ा हमें दिया। तो आपका जो सब्जेक्ट है इमोशनल हाइजीन, थोड़ा सा अगर आप हमें विस्तार में बताएं ये क्या है, ये सब्जेक्ट क्या कहता है।
1: जी तो गगन आपका काम है सवाल पूछना,
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: आप थोड़ा रोल रिवर्सल करते हैं, तो इस बार मैं आपसे सवाल पूछती हूँ और उस सवाल के उत्तर द्वारा हम अपने श्रोताओं से कनेक्ट करेंगे।
0: जी।
1: तो अगर मैं आपसे कहूँ गगन, सबसे पहले उठकर हम क्या करते हैं?
0: सबसे पहले मैं जो मैंने बात आती है नैतिक शिक्षा की, जो हमने अपने घर से सीखा है, समाज से सीखा है, मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद उसका करता हूँ कि तूने मुझे आज का दिन दिखाया परवरदिगार।
1: बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद?
0: उसके बाद मैं बहुत डिटेल में आप जान रहे हैं और अच्छी बात है, मैं फिर वही डिटेल में बताना चाहूँगा। अगर मैं बिस्तर पर, जिसे आम भाषा में कहा जाए हमारा बेड है या खटिया है, कहा जाता है कि बेटा जब उठते हैं तो आप धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, और उसके बाद मेरी नित्य रोज की जो प्रतिक्रियाएँ होती हैं, तो मैम इस तरीके से भगवान का धन्यवाद करते हुए मैं अपना घर से कदम निकालता हूँ, तो ये छोटी सी एक शुरुआत रहती है।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, और आपने जो बातें कही उस पर हम आगे और बात करेंगे, पर मैं आपके उत्तर में से एक जो कीवर्ड है वो उठाना चाहूँगी। आपने कहा कि मैं अपनी नित्य प्रतिक्रिया करता हूँ, और वो सभी के आई थिंक डेली रूटीन में शामिल है कि सुबह उठकर हम लोग अपने ब्रश आर टीथ, वी टेक अ शावर राइट, और वी कॉम्ब आवर हेयर, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर फिजिकल हाइजीन
0: राइट।
1: तो ये हमारी, जैसे आपने कहा कि नैतिक शिक्षा, कि भाई आपको अपनी सारी फिजिकल इम्प्योरिटीज की सफाई करनी है, ठीक है। लेकिन अब मेरा दूसरा सवाल होता है
0: जी,
1: कि हम अपनी मानसिक स्वच्छता के लिए क्या करते हैं। जैसे आपने तो बहुत अच्छी बात कही कि भाई मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, मैं धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, और एक बहुत ही अच्छे थॉट, एक विचार के साथ मैं आगे अपना जीवन शुरू करता हूँ कि आज किसी के लिए भी कोई बुरा काम ना हो, काम ना होगा क्योंकि आपकी सोच ऐसी है, तो वो आपकी सोच में रिफ्लेक्ट करता है और वो आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हम में से कितने लोग जो हैं वो इस तरह की मानसिक स्वच्छता की ओर ध्यान देते हैं? तो जो ये हमारा टॉपिक है इमोशनल हाइजीन, ये उसी को लेकर है। हम अपनी जिंदगी को जीने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम एक पॉज लेना,
0: क्या बात है,
1: और एक ठहराव लाना, वो कहीं हम भूल चुके हैं।
0: भूल चुके हैं,
1: और हम भूल चुके हैं, तो उसी तरह से शायद हमने अपनी नई पीढ़ी को तैयार करा है, हमने अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कंडीशन करा है कि आप भागते रहिए, आप अपने जीवन में आगे कुछ ना कुछ बढ़ते रहिए, और एक ठहराव बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। तो वो कैसे हम ला सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक मुहिम के तौर पे मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि जो भी हमारे श्रोता है वो इसको अपनी आदत में लेकर आए, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल हाइजीन, टू गेट क्लियर ऑफ All your impurities which are there in your mind.
0: क्या बात?
1: आपके जितने भी मानसिक विचार जो हैं उनकी सफाई या उनकी स्वच्छता का ध्यान रखना, क्योंकि आज अगेन जो हमारा टॉपिक जहाँ से हमने शुरू करा था वो है हमारे युवाओं को लेकर, और वो इतना एनग्रॉस्ड हैं। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि बच्चे अगर एक डिवाइस छोड़ते हैं, मोबाइल छोड़ते हैं, तो आईपैड छोड़ते हैं, तो लैपटॉप छोड़ते हैं, तो मे बी टीवी, तो वो इतना एनग्रॉस्ड हैं कि कहीं पे वो एक पॉज लेना भूल गए हैं। तो एक इस रेडियो के प्रोग्राम के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, एक हम आई वुड से कि आई वुड ट्राई टू रीटेरिएट जो आपने कहा कि नैतिक शिक्षा हमें मिली है, वो सभी के पास है पर वो कहीं ना कहीं
0: अप्लाई कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं कर पाते। मैम आपकी बात को मैं समझ गया और हमारे जो श्रोता हैं जो लिसनर्स हैं वाकई बहुत समझदार हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छी एक हिंट दे दी है जिस सब्जेक्ट पर लोग कतराते हैं बात करने से। और हमारा जो युवा अगर अलर्ट हो गया समझ गया संभल गया तो निश्चित तौर पर वो अपने आप को बचा कर रखेगा अपने लिए देश के लिए अपनी फैमिली के लिए और वो अपना नुकसान नहीं चाहेगा। सो लिसनर्स कहने का आशय यही कि वाकई एक अच्छा चर्चा का विषय। इस विषय को आप जानिए सुनिए समझिए और एक एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम हमारे साथ जुड़ी हुई है। सो कहीं जाएगा मत लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि हमें भी ठहराव की बहुत ज़रूरत है एक ब्रेक की ज़रूरत है। जब बातों का सिलसिला लगातार ज़्यादा हो जाता है तो हमें भी म्यूज़िक की आवश्यकता होती है। सो डोंट गो एनीवेयर स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरशादा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ प्रोग्राम है राबता।

0: जनाब म्यूजिक एक ऐसा जरिया है कि दिलों को जोड़ने का काम करता है, स्ट्रेस यानी कि तनाव को दूर करने का काम करता है, और यही एक वजह है कि गीत संगीत में जब आप खो जाते हैं तो कभी कभी आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं या अपना मन पसंदीदा गाना आप सुन लेते हैं। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं गगन आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है राब्ता और राब्ता कर रहे हैं हम, हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम जो कि डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छी तरीके से विषय पर आपने रोशनी डाली। विषय का नाम है इमोशनल हाइजीन यानी कि भावनात्मक स्वच्छता। स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है, चाहे वो मानसिक विचार हो चाहे वो आपकी हेल्थ की बात क्यों ना हो। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब मैं सुबह उठता हूं तो ध्यान भी करता हूं, ध्यान करना भी बहुत जरूरी है। और आज के परिवेश में हम देखें कि मैम ज्ञान का अथाह भंडार सोशल मीडिया के माध्यम से बह रहा होता है, किताबें भी हमने पढ़ी हैं या अच्छी अच्छी बातें हो भी रही होती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहा है जिसकी वजह से वो अपने कर्मों का, कहते हैं ना भाषा में, खुद भागीदार है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि आप भला कीजिए, आप सकारात्मक रहिए। मुझे लगता है कि उन्होंने एक समाज में चेतना ला दी है, युवा वर्ग भी बड़े बुजुर्ग भी, हर धर्म विशेष के लोग उनसे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। तो चीजें तो वही है लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कह रहा है और क्या कह रहा है और किस तरीके से सामने वाला उसको अप्लाई कर रहा है। तो मैं वाकई दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट आप लेकर आए, क्योंकि समाज में मैंने ये देखा है कि एजुकेशन सेक्टर में कुछ ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं घटी हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि उस पर हम रोशनी डालें। और वाकई आपने इस सब्जेक्ट को चुना, मैं पुनः बार-बार आपको शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैम थोड़ा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो चीज़ें हैं हमारे अंदर कैसे आती हैं, कैसे हम उनको आगे लेकर जाएं, कैसे अपने आप को तनाव से बचा कर रखें, वो चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो या आम जिंदगी में। यूथ अगर कनेक्ट करता है तो वो कहता है कि मेरा प्रेमी या प्रेम का रूट ही है, वो एक दूसरा टेंशन भी वो लोग ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, लेकिन जैसे आप जो टिप्पणियाँ आपने करी के ये कहीं ना कहीं इस बात का जो समाधान है, जो समस्या की हम बात कर रहे हैं, हम सभी उस चीज़ से अवगत है, वी आर अवेयर ऑफ दैट। जैसे आपने कहा कि आप मेडिटेशन करते हैं या आप ध्यान करते हैं, या इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है हमारे जो आजकल की जनरेशन है उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन बस कमी कहाँ एप्लीकेशन की है। तो आज आगे जो हम बातें करेंगे वो दो चार चीज़ें जो हम दोहराएंगे जो हमारे जीवन में ऑलरेडी हैं, पर उनको हम कैसे इम्बाइब कर सकते हैं और इमोशनल हाइजीन को कैसे अपना सकते हैं। अब मेरा सवाल आपसे है
0: जी,
1: अगर आपको कभी जैसे कट लग जाता है या थोड़ा सा जल जाता है
0: जी जी,
1: तो हमारा क्या रिएक्शन रहता है?
0: उस वक्त रिएक्शन यही रहता है कि ऐसा क्यों हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये लापरवाही क्यों हो गई। और कहते हैं कि हर एक घटना दुर्घटना सीख देती है कि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो
1: जी।
0: क्योंकि अंग भंग हो जाना बड़ा नुकसान होता है, समय बर्बाद होता है, रुपया आपका बर्बाद होता है और एक तनाव जो भी कहीं ना कहीं दिमाग में फिर रह ही जाता है
1: जी। तो इसको अगर हम मान के चले फिजिकल हर्ट कि भाई मैं सब्जी काट रही हूँ, मैं एक गृहिणी भी हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ और अचानक से मेरा हाथ कट गया
0: जी,
1: तो मेरा जो तुरंत रिएक्शन रहता है कि भाई हाथ कट गया, खून निकल रहा है, तो या तो मैं उसको पानी में हाथ डाल के खून को रोकना चाहूंगी, एंटीसेप्टिक से हाथ धोऊंगी या मैं बैंडेड लगाऊंगी,
0: डिटॉल से या आम भाषा में फिटकरी है तो कोई फिटकरी लगाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह के उपचार मेरे पास उपलब्ध है और अगर कहा जो है वो गहरा है तो शायद हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे कि भाई ये फिजिकल हर्ट है और हमें घाव लगा है, अब आप हमारा उपचार करिए। लेकिन क्या होता है जब एक इमोशनल हर्ट के हम शिकार होते हैं, क्या हम उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं? स्पेशली अगर हम बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इन सब बातों के लिए बात करना भी एक टैबू है।
0: क्या बात है,
1: तो ये एक टैबू है कि आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई अपनी सिचुएशन को आइडेंटिफाई कर और आप तक पहुंचना भी चाहता है तो वहाँ से शायद उनको उस तरह का रिस्पांस नहीं मिलता। और इमोशनल हर्ट इज मोर ग्रेवर देन द फिजिकल हर्ट। वो ज़्यादा गहरा घाव है इमोशनल हर्ट। बहुत तरह की बातें होती है, आजकल के जो बच्चे हैं वो एक एक या दो दो बच्चे ही है, बहुत लाड प्यार से पले हैं, तो अगर टीचर ने कुछ कह दिया या आपस में कुछ बात हो गई, जैसे आप बोल रहे थे पार्टनर से कुछ बात हो गई, अनबन हो गई है, तो क्या वो एक इमोशनल घाव को लेकर हम क्या करते हैं? ये सवाल मैंने, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस जो हम शारदा में पढ़ाते हैं, और मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी प्रोपोगेटर मैं कह सकती हूँ, तो मैं अपने क्लास में भी अपने बच्चे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स उनसे पूछती हूँ कि क्या करते हो जब आपको इस तरह का मानसिक घाव लगता है, तो उनका जवाब होता है कि मैम हम अगर हमें दुख होता है तो हम और दुख भरे गाने सुनते हैं, या अलग अलग मीन्स है, नो क्या आई फाइंड सोलेस इन फूड, गुड फूड है, तो अपने अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। पर फिर मेरा सवाल उनसे यही रहता है कि क्या आप उसको, जिस तरह से आप एक फिजिकल हर्ट को, एक शारीरिक घाव को सहेज के रखते हो, उसे बचा कर रखते हो, उसे प्रोटेक्ट करके रखते हो, क्या वही एफर्ट आप एक मेंटल हर्ट के लिए, एक मेंटल घाव के लिए, एक मानसिक घाव के लिए उतना एफर्ट आप दे पाते हैं?
0: बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, यूथ को संभलने का आप मौका दे रहे हैं कि अगर इस तरीके से कोई दिक्कत परेशानी होती है तो घुटे ना, आम भाषा में जिसे कहा जाता है, कहा जाता है कि मन का बोझ हल्का हो जाता है जब आप अपने मन की बातें शेयर करते हैं। और सेहत सही तो लाभ कही दोस्तों, मैं तो ये भी कहूँगा कि उस दोस्त से आप ज़रूर बातें साझा करिएगा, जो दोस्त आपकी बात का मजाक ना उड़ाए, भरे समाज में आपकी बातों को इधर से उधर ना करे, ऐसे दोस्त होना भी बहुत बड़ी बात है। और जिस परिवेश की हम बात कर रहे हैं, जिस माहौल की बात कर रहे हैं, आप और हम शारदा विश्वविद्यालय से ताल्लुक़ रखते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ आपके टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आपके मेंटोर हैं, तो आप उनसे ज़रूर बात करिएगा, क्योंकि बातों से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। चलिए मैम, यहाँ पर इस सिलसिले को आगे ले जरूर लेकर जाएंगे, तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। सो लिसनर्स, कहीं दूर मत जाएगा, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी कनेक्ट प्रोग्राम, जिसके जरिए हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने यूथ को, और प्रोग्राम का नाम है राब्ता और विषय है इमोशनल हाइजीन। सो सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: शादी में पूरे गांव को दावत देंगे, एक एरोप्लेन में कायलपट्टन के लोग होंगे, दूसरे में नरसापुर। ए बाबू हाँ बोल दे, तेलुगु में हाँ कैसे बोलते हैं?

0: बड़ी दुआओं से ईश्वर से खुदा से पिता परमेश्वर से आपको यानी कि आपके माँ बाप ने आपको मांगा है। कहते हैं कि जिस आंगन में बच्चे खेलते हैं कूदते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, कभी कभी माँ भी नाराज हो जाती है, पिताजी भी नाराज हो जाते हैं, वो एक अलग बात होती है। सोचिए जिस घर आंगन में बच्चे ना खेलें ना किलकारी गूंजे तो बहुत सुना सुना वो आंगन लगता है। राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और एक विशेष कार्यक्रम सुन रहे हैं आप राब्ता। और इस राब्ता कार्यक्रम के जरिए हम राब्ता कर रहे हैं एक विषय से जिसका नाम है इमोशनल हाइजीन। और इस सब्जेक्ट पर बात करने के लिए डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम, जो कि आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर से, जो एक रूपरेखा बनाने का मैंने प्रयास किया उसका मतलब मकसद सिर्फ और सिर्फ यही कि आप दुआओं से मांगे हुए हैं, बड़ी मिन्नतों से आपने जन्म लिया है और जन्म लिया है तो कहते हैं कि ये खुदा की ईश्वर की नेमत है, इसको आप नुकसान ना पहुंचाएं। कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से मानव जन्म मिलता है, जब आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं तो आपके माता पिता भी सिवाय आंसू के आप उनको कुछ देकर नहीं जा रहे होते। अगर आपने उस दुख दर्द को झेला है, जाना है, समझा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको उनकी दामन में उनकी झोली में खुशियों से उस दामन को हम भर दें। तो मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट आप लेकर आई हैं।
1: आपका भी शुक्रिया और आपके श्रोताओं का भी शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए कि वो इतने पेशेंटली हमारी बात को सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि अगर हमारे श्रोताओं के किसी एक या दो के जीवन में भी कोई हम एक विचार में कुछ जैसे आपने कहा पॉजिटिविटी लेकर आ पाए तो आई थिंक वो उद्देश्य इस प्रोग्राम को करने का सफल
0: बहुत खूबसूरत। कल परसों मेरी किसी से बात हो रही थी, बीइंग अ मीडिया पर्सनालिटी, बीइंग अ रेडियो प्रेजेंटर होने के नाते मुझे अच्छा लग रहा है कि वाकई मैं बारंबार मैं इमोशनल हो रहा हूँ कि एक अच्छे सब्जेक्ट को आपने चुना और जिस परिवेश में हम और आप रह रहे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मेरे पास कुछ फ्रेशर्स आए थे, मैंने रेडियो की भाषा में समझाने की कोशिश की, मैंने कहा देखो ऐसा है भाई, एक कहावत है कि चिकने घड़े बनना हर गम को यूं करके आप भुला दीजिए, क्या आपको नहीं मिलेगा? मार्क्स अगर कम रह गए तो मार्क्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। आप चाय के साथ चर्चा करिए, फिल्म देखने चले जाइए, टूर पे चले जाइए। अगर आपको और भी गम है, जो हम बात कर रहे थे प्रेमी प्रेमिका की, लोग आते जाते रहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को हार्म पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं। तो मैंने अपने रेडियो भाषा में उनको समझाने का छोटा सा प्रयास किया
1: क्योंकि जैसे आप बार बार दोहरा रहे हैं कि इस तरह के इको सिस्टम से जुड़े होने के हम लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि एक तरह की जागरूकता हम लेकर आए। तो यहाँ मैं दो इम्पॉर्टेंट बातें कहना चाहूँगी जो हम बात करें इमोशनल हाइजीन की, कि एक तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने इकोसिस्टम में, ये सभी लोगों के लिए है, ना सिर्फ लोग जो इस तरह की इमोशनल हर्ट से या मेंटल प्रेशर से जो है वो जो गुजर रहे हैं, बल्कि उनके आसपास के लोगों जो लोग जुड़े हुए हैं जैसे माता पिता या टीचर या अभिभावक या आपके दोस्त, के इट्स हाई टाइम वी लर्न टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स।
0: ये मेरा सवाल था मैम, बहुत खूबसूरत बहुत।
1: तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे डॉक्टर हैं तो हम सभी को एक डॉक्टर बनना पड़ेगा क्योंकि ये जो चीज़ है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। और कई बार आप इस सिचुएशन में होते हैं, आप अपने उस सिचुएशन में होते हुए आप बहुत बड़ा चीज़ को डायग्नोस नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से, एक जो इस सिचुएशन के बाहर खड़ा हुआ है और उस नज़रिए से आप देखते हैं तो आप उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आपके मेंटर्स हैं या आपके टीचर्स हैं या आपके पीयर ग्रुप है, तो उन लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि इस तरह के अगर हम सिम्टम्स देखें तो जैसे आपने कहा कि दिस इज़ नॉट समथिंग टू टैबू अबाउट, ये कोई गलत बात नहीं है। जिस तरह से हमें फिजिकल हर्ट होते हैं, हमें बीमारियां होती हैं, शारीरिक बीमारियां होती हैं और हम उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से कोई मानसिक तनाव है या कोई मानसिक प्रेशर है तो उसका उपचार भी उपलब्ध है और ये चीज़ जो है वो बहुत आसानी से ठीक हो सकती है।
0: बहुत खूबसूरत मैम, वाकई बहुत एक अच्छा सवाल जो मैम की तरफ से खुद ही आया और उसका बहुत खूबसूरती के साथ मैम ने जवाब दिया। मैं भी थोड़ा होमवर्क कर रहा था, मेरे भी दिमाग में यही सवाल था कि इसका आंसर मैं आपसे जानूं। तो मैम आपने जो बात रखी लिसनर्स, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ज़िंदगी बहुत बहुत बहुत खूबसूरत से प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। और फिर कहता हूं, बारंबार कहता हूं कि ना टेंशन लेने की ज़रूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं मैम कि टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का। मेरा मानना यह है कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, खुश रहने का, क्योंकि जब आप खुशनुमा माहौल बनाते हैं तो आप खुश रहते हैं, आपकी तरक्की होती है, बरकत होती है। लेकिन जब आप एक ताना बाना बुनते हैं कि मैं उसको नीचा कैसे दिखाऊं, उसको गिराने की कोशिश मैं कैसे करूं, तो मुझे लगता है कि आप वहीं उलझ कर रह जाते हैं और आपकी तरक्की बरकत रुक जाती है, थम जाती है। तरक्की बरकत आपको एक ना एक दिन मिलेगी ज़रूर। कछुए की चाल से धीरे धीरे धीरे धीरे कोशिश करते रहिए, खुद पर और खुदा पर यकीन रखिए, तो निश्चित तौर पर कामयाबी आपको मिलेगी ज़रूर। हाँ जी बेटा गगन, ये तो नई लाइन आ गई। ये मेरे साथ बहादुर होते हैं और बहादुर ने इशारा कर दिया कि गगन इसको कॉपीराइट करा लीजिएगा। तो मैम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम अपनी बातों को समापन की ओर जरूर लेकर जाएंगे। सो छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शोर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: तुझसे है कैसा ये राब्ता। राब्ता बहुत ही शीर्षक, बहुत ही खूबसूरत नाम, और इसके जो जन्मदाता हैं आप हैं डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम। आपने बहुत ही खूबसूरत नाम इस प्रोग्राम का रखा है, और आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर में, आप यहाँ कार्यरत हैं, और आप एक सब्जेक्ट को चुन कर लेकर आई हैं जिसके बारे में सुनना समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये भी कहूँगा कि सिर्फ यूथ ही इस प्रोग्राम को ना सुने, अपने पेरेंट्स को भी आप कार्यक्रम को ज़रूर सुनाइए। इमोशनल हाइजीन के बारे में बातें हो रही हैं, भावनात्मक स्वच्छता के बारे में बातें हो रही हैं। मैम ने यह भी बताया कि आपके शरीर को थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो आप अलर्ट हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब आप अंदर से टूट रहे होते हैं, मानसिक तनाव होता है, तो तब हम क्या करें। आपने ये भी कहा कि लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, बातचीत के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। तो मैम फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करें, कोई ऐसी बात जो आपसे छूट रही है, जो आप कहना चाहती हैं यूथ से, जैसे कि मैंने जिक्र किया पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी, तो आप कह सकते हैं।
1: जी, तो सबसे पहले मैं वो इकोसिस्टम को लेकर ही जो हम बात करते हैं कोपिंग मैकेनिज्म, कि हम किस तरह से तनाव, देखिए हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, हर स्टेज पे, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, किसी ना किसी बात का तनाव हम लोगों को रहता है। तो यहाँ पे क्योंकि हम एकेडमिशियन है और एक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे मैं उजागर करना चाहूँगी कि जो कंसेप्ट है जो हम तनाव की बात करते हैं, वो सेंस हाइले साहब ने इसको प्रोपोगेट करा था, और उन्होंने कहा था कि सम स्ट्रेस इज नेसेसरी टू लीड अ लाइफ बट इट शुड नॉट बी डिस्ट्रेस। राइट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस,
0: समझने की जरूरत है
1: जी। तो हमें स्ट्रेस में से डिस जो नेगेटिव कनोटेशन है उसको हटाना है। अब हम ये कैसे कर सकते हैं, तो पहला जो कोशिश मैं जो मैं बात कहना चाहूँगी वो कोशिश रहेगी हमारे आसपास से जुड़े लोगों की, मैं भी एक पेरेंट हूँ और आप भी एक पेरेंट हैं, फिर मेरा वही सवाल रहता है कि जैसे बच्चा एग्ज़ाम दे के आता है, तो सबसे पहले हमारा सवाल एज ए पेरेंट, और ऐसे नहीं है ये सवाल मैंने अपने बच्चों से नहीं करा, जब मेरे बच्चे एग्ज़ाम दे कर आते हैं तो पहला सवाल मेरे उनसे होता है हाउ वॉज योर एग्ज़ाम, आपका पेपर कैसा रहा। लेकिन जिस बच्चे ने वो एग्ज़ाम दिया शायद हम उसको भूल जाते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। राइट, तो ये चीज़ छोटी, बहुत छोटी चीज़ है, अगर एज अ पेरेंट एज गार्जियन इफ़ वी कैन इम्बाइब दैट इन टू आर डे टू डे लाइफ, कि सिर्फ ये ना पूछ के हाउ आर यू, अगर हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेस करें हाउ आर यू फीलिंग टूडे, तो बहुत जो है एक डिफरेंस बनेगा लाइफ में, क्योंकि वो एक फ्रेज हमें एक मौका देगा अपनी एक्सप्रेशंस को, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने का। तो यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो प्रेशर कुकर से तो वाकिफ होंगे, तो कहते हैं कि वो सीटी इसीलिए लगाई जाती है कि वो प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होता था। तो बस वही जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना है, कि जहाँ हम एक मौका दे सकें एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर, एज ए मेंटोर, एज पेरेंट, एज कोलीग्स टू अदर पर्सन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ विदाउट बीइंग जजमेंटल। बहुत ज़रूरी है कि हम उनको, उनकी बात को सुनें, क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चा आके कुछ हमसे बात कहना चाहता है, और एज अ पेरेंट ऑल्सो हम जजमेंटल हैं, तुमने ही कुछ गलत करा होगा या तुम्हारी ही गलती रही होगी, तो वो क्या है, हम बच्चे को धकेल रहे हैं, अपने कोलीग्स को धकेल रहे हैं कि वो आके हमसे बात ना शेयर करें। तो इमोशनल हाइजीन जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बात हम ध्यान में रखें कि जब हम किसी सिचुएशन, किसी इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हैं तो वी हैव टू डील विद एन ओपन माइंड, हमें नहीं पता वो पर्सन किस तरह की दुविधा से, प्रेशर से गुजर रहा है।
0: बहुत खूबसूरत।
1: दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जैसे आपने नैतिक शिक्षा की बात करी, तो मैं उस नैतिक शिक्षा के सूत्र को लेकर कहना चाहूँगी। आपको याद हो अगर हमारे पुराने घरों में सुबह उठते के साथ ही श्लोकों का जो है वो उच्चारण होता
0: जी,
1: था
0: जी,
1: चाहे वो गायत्री मंत्र ही क्यों ना हो। तो अभी एक स्टडी हुई है लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट में, सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, जहाँ पे क्योंकि लोगों का मानना है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो सिर्फ अप्लाइड साइंसेस तक एप्लीकेबल है, जहाँ हम फिजिक्स की बात करते हैं या केमिस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल साइंसेस में भी बहुत एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. और एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ पे दो ग्रुप्स को लिया गया, एक ग्रुप जिनको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आती थी और एक ग्रुप जिनको संस्कृत आती थी. और जिन लोगों को इंग्लिश और हिंदी आती थी उनको कुछ दिन तक संस्कृत के श्लोकों का जो पार्ट है वो सुनाया गया, और उनका फिर एक फंक्शनल MRI, एक एडवांस लेवल का MRI है, और वो किया गया. और उस फंक्शनल MRI में आप इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं और जो भी आपका रिस्पोंडेंट होता है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके काम करता है. तो उसमें जो MRI ब्रेन का हुआ तो उनका रिस्पॉन्स पहले जब सिर्फ वो इंग्लिश और हिंदी जानते थे, और जब उसके बाद जब उन्होंने संस्कृत श्लोक का जो पठन सुनना शुरू करा उसमें बहुत अंतर था. तो आप जिस भी मज़हब से आप बिलोंग करते हैं, आप हर किसी मज़हब में आपको वर्सेस मिल जाएंगी, कुरान की आयतें मिल जाएंगी, या अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो आपको श्लोक मिल जाएंगे. तो एक हैबिट बना सकते हैं कि हम अपने घरों में सुबह के टाइम इसका उच्चारण जो है वो करें. उसका इफ़ेक्ट, क्योंकि ये कोई एक मैजिक पोशन नहीं है कि हम पिए और वो तुरंत दिखें, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ जो है वो दिखेगा. दूसरी चीज़, अब I'll just take two more minutes to wind up. जब हम जनरेशन जी की बात करते हैं तो ये आप भी मुझसे जो है बहुत हद तक सहमत होंगे. दे थ्राइव ऑन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जैसे 2 मिनट्स नूडल, 30 seconds ऑफ यूट्यूब शॉर्ट, सब कुछ तुरंत अभी. तो इसके विपरीत थोड़ा हमें जाना पड़ेगा, जैसे हमने पहले पॉज की बात करी थी. और अगेन एज एन एकेडमिशियन जब मैं यहाँ कुछ कह रही हूँ तो ये जो चीज़ें हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है, ये शोध के द्वारा जो है वो स्थापित की गई है. तो एक कॉन्सेप्ट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जो मिशेल वॉल्टर एक थ्योरिस्ट हैं, उन्होंने स्टैनफोर्ड में ये एक्सपेरिमेंट करा था. और उन्होंने 5 साल के बच्चों को लिया और उनको मार्शमेलो, जैसे

0: नहीं खाते हैं और 15 मिनट तक वो रेजिस्ट कर पाते हैं, तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको एक मिठाई के बदले 2 मिठाई दी जाएगी।
1: जी।
0: तो इस तरह से उन्होंने ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को उस मिठाई के साथ एक बंद कमरे में छोड़ दिया जिसमें कैमरा लगा हुआ था। सॉरी, तो जब थोड़ी देर के बाद आए कुछ बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है अगर हमारे श्रोता से देखना चाहें तो। तो बच्चे मुंह बनाते हैं, कोई उसको लिक करता है, कोई चाटता है, कोई उसको खा भी लेता है। और फिर जिन बच्चों ने वो टेम्पटेशन रेजिस्ट नहीं कर पाए थे, ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है हमारे एकेडमिक्स में, तो उन्हीं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को लेकर 15 साल बाद फिर स्टडी की गई।
1: जी।
0: जो बच्चे 5 वर्ष के थे वो अब 20 वर्ष के हो गए, और उनका जैसे हमारे यहाँ कॉलेज में प्रवेश के लिए एक एग्ज़ाम होता है, उनका एग्ज़ाम सेट स्कोर के नाम से होता है, तो उनके सेट स्कोर उन बच्चों के एग्जामिन किए गए। तो जिन बच्चों ने उसको टेम्पटेशन को रेजिस्ट करा था, उस मिठाई को नहीं खाया था, उनके स्कोर काफ़ी बेहतर थे उन बच्चों के कंपेरिजन में जो मिठाई को रेजिस्ट नहीं कर पाए थे और तुरंत दे गिविन टू द टेम्पटेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और तुरंत वो मिठाई उनके मुंह में चली गई थी। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन देयर परफॉर्मेंस। तो क्या इससे हम निकालते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रेजिस्ट आवर टेम्पटेशंस एंड टू डीक्लटर आवर थॉट्स। संस्कृत में एक बहुत अच्छी वर्स है जो मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद दिलाती है और हमारे स्कूल की डायरी में लिखी होती थी, तमसो मा ज्योतिर्गमय।
1: जी।
0: राइट, दैट इज फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अस्तो मा सद्गम्य, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स। तो पॉजिटिविटी लाइफ में, जैसे आपने कहा, जीवन बहुत ही सुंदर है और बहुत ज़रूरी है कि हम नेगेटिविटी को हम जो है ऑल टुगेदर एलिमिनेट नहीं कर सकते अपनी लाइफ में से। कोई ना कोई हमें मिलेगा जो हमारे विचारों से सहमत नहीं करेगा और जो शायद हमें ह्यूमिलेट भी करेगा, जो चाहे हमें बुरा भला भी कहे।
1: जी जी
0: जी। तो बहुत ज़रूरी है कि उस नेगेटिविटी को दूर रखकर इमोशनल हाइजीन प्रैक्टिस करके, जैसे आपने कहा, कुछ 2-4 बातें जो आई थिंक हम सभी को मालूम है, ये एक माध्यम है रिटीरिएट करने का। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ें कॉन्शियस लेवल पे नहीं करते, तो एक कॉन्शियसनेस लेकर आने का कि जहाँ पर हम और आप मिलकर मेडिटेशन, चाहे वो 2 मिनट, और मेडिटेशन ज़रूरी नहीं कि आप आँख बंद करके बैठें, आप सिर्फ चुपचाप एक कोने में बैठें, एक इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपका पिछला दिन कैसे गुजरा और वो दिन कैसे बेहतर हो सकता था। क्या आप वॉक कर रहे हैं तो एक मेडिटेटेड वॉक, जैसे हम कहते हैं कि हर एक कदम पे हम ओम नमः शिवाय बोलेंगे या जय श्री राम बोलेंगे, तो एक मेडिटेटेड वॉक आप कर सकते हैं। और फिर म्यूजिक, जैसे आपका रेडियो स्टेशन तो है ही हमेशा, तो जब भी आपको ऐसे लगे इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं, बहुत सूदिंग इफेक्ट होता है म्यूजिक का भी। अदरवाइज आप यंग जनरेशन है, आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं।
1: बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरती के साथ आपने हर एक सवाल का जवाब दिया, और जिस तरीके से लास्ट में आकर आपने चौके छक्के मारे, या कहें कि मतलब इन बातों को अगर लिसनर्स, अरे नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको मंच पर यूं कहें कि मंच संभालते हुए देखा, मैं आपसे सीख रहा हूँ। और बस लिसनर्स, हम यही कहेंगे कि फिर अपने शब्दों को दोहराऊंगा कि वाकई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, अपने अंदर खुशियाँ तलाशिए, ज़माने में खुशियाँ तलाशिए, खुशियाँ बांटिए। और जिस तरीके से मैडम ने बात की कि पेरेंट्स की जो भूमिका है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि दोस्ताना व्यवहार के साथ उसके बच्चे के दुख दर्द को हम बांटें, दुख दर्द को कम करने की कोशिश करें, वो खुशनुमा माहौल बना कर दें ताकि वो अपने मन की बात हमसे साझा कर पाए, शेयर कर पाए। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है कि जिसकी वजह से बच्चे हिम्मत नहीं कर पाते अपने अभिभावक से अपने मन की बात साझा नहीं कर पाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, दिल की गहराइयों से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम का, क्योंकि आप एक ऐसे सूत्र हैं जो हम अपने आसपास की कम्युनिटी के साथ जुड़ पाते हैं। तो एक बार फिर बहुत तहे दिल से आपको और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा रखते हैं कि हम आगे भी मिलेंगे और कुछ ऐसे
1: अच्छा करेंगे, कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिर यही कहेंगे कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, खुश रहने का, बिंदास रहने का। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8।

एफएम का ये विशेष कार्यक्रम राबता कैसा लगा जरूर हमसे राबता करेगा 0120404020205 पर। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह, जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थायी होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया

क्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: दो दीवाने शहर में, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड एंड अरेंज्ड बाय जैकी वंजारी, सिंगर सोनू निगम एंड ऐश्वर्या भंडारी, लिरिक्स बाय कुमार, म्यूजिक बाय श्रेयस पुराणिक। दो दीवाने शहर में, ओनली ऑन सारेगामा। सो लेट्स एंजॉय इट, केवल सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
3: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
2: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
3: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
2: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ,
4: दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
5: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

म्यूजिक, देसी ट्रैप, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, सिमरन कौर टडली, टाइटल दिलबर जानी, लेट्स लिसन टू इट ओनली ऑन सोनू शारदा 90.8 FM।

0: एफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
0: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
0: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहां पहले एक दिन में कई गोलियां लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियां ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयां दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: बेटा दाई माँ से बात कर लेना, पर सबका समय नजदीक आ रहा है, उन्हें कभी भी आना पड़ सकता है।
1: दाई क्यों माँ, गांव में अस्पताल है, बच्चे का जन्म वहीं कराएंगे।
0: पर बेटा हमारे खानदान में सब लोग दाई के हाथों से ही जन्म लेते हैं, अब ये अस्पताल अस्पताल।
1: पहले का समय कुछ और था, अब तो इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होगा।
2: बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा।
3: अरे आशा बहू आओ आओ।
2: सुरेश की अस्पताल में प्रसव कराने की सोच एकदम सही है। अस्पताल में प्रसव सुरक्षित और फायदेमंद होती है, जैसे बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है। प्रसव के बाद खतरे के लक्षण पहचानकर उनका तुरंत इलाज किया जा सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा को कोई संक्रमण ना हो। खून की जरूरत पड़ने पर वो स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर माँ को प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में जांचों, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान आदि की भी सुविधा बिल्कुल मुफ्त है।
0: बिल्कुल सही कह रही हो आशा बहू। सुरेश बच्चे का जन्म अब सिर्फ अस्पताल में ही होगा।
2: जे हुई ना बात, तो आप भी समझ गए ना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में प्रसव कराने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्म सिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो, और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ, और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है, और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है, कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है

0: कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं, तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है, इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM, सुनो शारदा।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से

0: भी बारीकियां सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे, मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ, मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ, मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो, तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: बाबू क्या हुआ?
1: हम रोज 29 की रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं ना तो वापस 29 होती है।
0: हाँ? मतलब
1: हमारी 30 नहीं आ रही है तितली।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making एक creative field है, और यदि आप creative सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM.
3: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा, छलावट की,

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: अर्जुन बेटा,

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
5: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 एफएम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।